0: Families are spending over $1,000 per child on uniforms, and Wins is lending millions to buy them. To sport, Hurricanes assistant coach Corey Jane's hoping a big crowd turns up for tonight's Super Rugby playoff game against the Brumbies. The weather's not looking great for Wellington though, with possible thunderstorms forecast.
1: And we might have to sell a couple of hurricane ponchos just in case they get wet, or maybe, you know, a couple of towels, hurricane towels.
0: And the Black Caps have a big job ahead of them when they resume on 61 for 6 on day 2 of the first cricket test against England at Lord's tonight.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: Weather ke halchal jaan lete hain. Aaj kareeban 20 degrees maximum temperature rehne wala hai aur 30 degrees aaj ka minimum temperature rehne wala hai. 100% chance hai barish ke aur 5:13 pe hoga aaj ka sunset.
2: Playing Bollywood's biggest hits. Budget gaane.
3: Yeah! Lunchbox with Ketan.
4: Kiran, namaste, sat sri akal, assalam alaikum, bula aapka swagat karte hain aaj ke is lunchbox show mein. Well, kaisa ja raha hai aapka din? Din to nahi, abhi actually shuru hi hua hai, lekin yes, morning aapki kaisi gayi? Maine 6 baje se show shuru kiya tha, breakfast show with Ketan ji. Aaj maine कवर किया था ब्रेकफास्ट शो एंड इट हैज बीन अमेजिंग यार. आपसे वहाँ पे भी मतलब काफी लिसनर वहाँ पे भी थे एंड देन ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर दैट यहाँ पे भी काफी लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं. सो यस, थैंक यू सो मच अगेन. बट आप बनी रहिए, मेरा नाम केतन है, मैं अभी से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे हूँ. बहुत सारी बातें होने वाली, बहुत सारी गपशप होने वाली है. सो यस, शुरुआत करेंगे पहले गाने से जिसका नाम है मेरा नीति मोहन की आवाज में. वो आप एंजॉय करिए, मैं लेके आऊंगा लेटेस्ट खबर बहुत ही जल्द. लेडीज के साथ साथ ऑफ कोर्स होम सिक रेमेडीज एंड साथ में ऑफिस शाउट आउट की भी बातें होगी. सो यस, मेक श्योर आप मुझे मैसेजेस भेजिए रिगार्डिंग होम सिक रेमेडीज एंड उसके बाद ऑफिस शाउट आउट की बात होगी. लेकिन यस, आप बने रहिए और सुनते रहिए लंच बॉक्स शो.
3: बचाओ क्या,

0: Well, अभी की लेटेस्ट आपको होम सिक रेमेडीज के मैसेज बता देता हूँ. I have received plenty of messages. सबसे पहले तो किधर गया? हाँ ये रहा. संजय कहते हैं my home sick remedy is watching old family videos where everyone is talking over each other. It's chaotic but comforting. Nice. I miss family cards games during holidays. Nobody followed the rules properly, but everyone had fun. ये अरविंद ने मैसेज भेजा. थैंक यू सो मच अरविंद. रितु कहती हैं आई मिस माई ग्रैंड मदर स्टोरीज. शी कुड टेल द सेम स्टोरी 20 टाइम्स एंड आई वुड लिसन टू इट एवरी टाइम. क्या बात है, वेरी नाइस ऑफ यू. उसके बाद जावेद कहते हैं आई मिस हियरिंग द प्रेशर कुकर विस्लिंग एंड नोइंग डिनर हैज ऑलमोस्ट रेडी. ये तो यहाँ पे भी होता है यार. ये मतलब हाँ लाइक अनलेस इफ यू आर नॉट यूजिंग इट दैट इज डिफरेंट थिंग. काजल कहती हैं माय होम सिक क्योर इज मेकिंग ट्रेडिशनल स्वीट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. द किचन स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक माय चाइल्डहुड. वेल थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेज के लिए. वैसे यस आप मुझे होम सॉरी ऑफिस शाउट आउट के लिए भी मैसेजेस भेजें सो दैट वी कैन रीड इट आउट एंड वी कैन यू नो आई कैन जस्ट टेल मेक श्योर कि आप अपना नाम, क्योंकि एक मैसेज आया है मैंने सिर्फ एक शब्द लिखा था, उन्होंने अपना नाम लिखा है, बट जस्ट मेक श्योर आप अपना नाम भी लिखें आपकी बार जो भी मैसेज आप भेजें तो होम ऑफिस शाउट आउट में. ऑन ऑल्सो कौन सा गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे किसी को भी लेट मी नो. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. हम कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन.
1: ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ

0: शाउट आउट।
1: ऑफिस शाउट आउट में आपका स्वागत है। एंड पहला मैसेज सेगमेंट के लिए ये है कि आई बॉट अ सैलेड फॉर लंच एंड देन इमीडिएटली ब्रॉट अ ब्राउनी एज वेल। सारा कहती न्यू मार्केट से, ये एक्चुअली इन्होंने कल भी किया था ना, बट एनीवे थैंक यू अगेन सारा। यू लुक्स लाइक ईदर यू हैव कॉपी एंड पेस्टेड द मैसेज और इट लुक्स लाइक यू हैव अगेन हैड अ चीट डे। जी हाँ। दीपक कहते हैं लिसनिंग फ्रॉम द वेयर हाउस, समवन ब्रॉट होममेड मैंगो पिकल एंड नाउ एवरीवन वांट्स द रेसिपी। यार ये भी कल मैसेज है, मैं कल के तो मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ ना, मैं कल के मैसेज पढ़ रहा हूँ डेफिनेटली। सॉरी, सो हियर्स द मैसेज, I forgot my wallet at home, so lunch is whatever snacks I can find in my desk drawer. Oh, so do you save there? क्या बात है, इन्होंने अपना नाम लिखा वैसे तो, but that's fine. उसके बाद विजय कहते हैं, retired life is amazing. I had lunch at 11 a.m. and now I'm already planning afternoon tea. क्या बात है, क्या बात है. Yeah, I think you should have it now because अभी तो 12:15 तो बज चुके हैं. I think 12:20 हो रहे होंगे शायद. But yes, another message is my son made me promise not to swap my homemade lunch for takeaway today. He's keeping track, apparently. Kiran कहती हैं, well, how you know? अगर वो रख रहे हैं तो definitely it is good. उसके बाद Josh कहते हैं, just bought hot chips for lunch and got attacked by 3 seagulls before I even sat down. Wow, did you get another one? लेट मी नो जॉश, बताएं क्यों आपके भी मैसेज के लिए। बुला विनाका, माई मम पैक्ड टैरो एंड खरी टुडे, माई को वर्कर्स ऑलवेज नो वेन आई ओपन माई लंच बॉक्स। प्रिया कहती हैं ये मैंगरे से इन्होंने मैसेज किया है। उसके बाद आखिरी मैसेज है नील माउंट वेलिंगटन से, द ऑफिस माइक्रोवेव ब्रोकन टुडे, हाफ द स्टाफ आर ईटिंग कोल्ड लंच टुडे एंड कंप्लेनिंग टुगेदर। दैट्स सो स्वीट, वेल थैंक यू सो मच। ये जो गाना है नेक्स्ट है जवानी तो इश्क होना है, अमेजिंग सॉन्ग है, शंकर महादेवन और हेमा सरदेसाई की आवाज में, एंजॉय करिए।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

Well, आज की लेटेस्ट खबर ऑन हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात करें तो एक तो मैंने सुबह बताया था मॉर्निंग में अबाउट आज के दिन 1800s में 19th सेंचुरीज में ASB बैंक जो है वो खुला था, जो कि अमेजिंग बात है. लाइक यू नो इट हैज बीन इतने साल हो गए. एग्जैक्टली कौन सी तारीख है मैं अभी देख लेता हूँ. जस्ट गिव मी 1847. जी हाँ, यानी कि भारत की आज़ादी से ठीक 100 साल पहले 1847 में ASB बैंक खुला था. बट यस, जो दूसरी बात ये है कि 5 जून 1866 यानी कि ये करीबन उससे 19 साल बाद की बात है जब माओरी लीडर टे कुटी को बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के चैथम आइलैंड भेज दिया गया. अथॉरिटीज को शक था कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, लेकिन उनके खिलाफ क्लियर एविडेंस नहीं मिले. एक्साइल के दौरान टे कुटी ने स्पिरिचुअल टीचिंग्स डेवलप की और रिंगातू नाम का एक नया फेथ भी शुरू किया. दो साल बाद 1868 में वो और उनके फॉलोअर्स चैथम आइलैंड से स्केप करके न्यूजीलैंड वापस आ गए. टे कुटी की स्टोरी आज भी रेजिलेंस, फेथ और जस्टिस के स्ट्रगल की एक पावरफुल एग्जाम्पल मानी जाती है. उनका इम्पैक्ट माओरी हिस्ट्री और कल्चर में आज भी महसूस किया जा सकता है. सो यस, ये थी आज की हिस्ट्री स्पॉटलाइट. थैंक यू फॉर लिसनिंग. कीप लिसनिंग टू दिस अमेजिंग सॉन्ग, बहुत ही बढ़िया है. हैप्पी फिर भाग जाएगी टाइटल ट्रैक दलेर मेहंदी और हर्षदीप कौर की आवाज़ में.

वेल यस, रुआ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री ऐप है, आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी बातें, हमारे जो रेडियो लाइव कन्वर्सेशन होती है वो सारे, और पॉडकास्ट और प्लेलिस्ट के साथ साथ वो भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ में गेम्स भी हम लाते रहते हैं जहाँ पे आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। जी हाँ, तो टाइम ना खोटी करिए और फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए आज ही अपने फोन पे, अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, एंड देन एंजॉय करें हमारे सारे जो इन हाउस मेहनत करके हम आपके लिए पॉडकास्ट लेके आते हैं, जिसमें जिसके बारे में बातें अभी थोड़ी देर में होगी, बट प्लेलिस्ट में भी जैसे कि हम रिवाइंड यानी कि 60s 70s के हैं गाने आप सुन सकते हैं बॉलीवुड के, और रोवा का सबसे नंबर वन म्यूजिक स्टेशन है ये। उसके बाद नंबर टू स्टेशन है 80s दशक के गाने, 80s जुकबॉक्स, फीजी भजन और फीजी कीर्तन भी सुन सकते हैं, चढ़ती कला वो भी सुन सकते हैं, और राहत फतेह अली खान के गाने भी आप सुन सकते हैं। सो यस, स्टे ट्यून एंड गेट सम मोर अपडेट फ्रॉम अस वेरी वेरी सून, बट अभी के लिए डाउनलोड करिए एंड एंजॉय करिए हमें लिसनिंग फ्रॉम देयर। लंच बॉक्स विद केतन, ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
2: Please use your imagination for the following ad.
3: If I won Powerball, the first person I'd tell would be... and would surprise all our friends by...
4: Imagine winning $4 million this Saturday. Play in store or online.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
7: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: चटनी शॉट्स।
1: चटनी शॉट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम फटफट से न्यूज पढ़ेंगे। रोटोरुआ में थीफ ने हद ही कर दी। एक पंप स्टेशन को खोद कर लगभग 150 मीटर कैबलिंग चुरा ली है गई। पुलिस ने इस अनयूजुअल थेफ्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। एक बेबी के फैटल ओवरडोज केस की रिपोर्ट में फार्मेसी सिस्टम की कई फेलर हाईलाइट हुई है। रिपोर्ट के बाद मेडिसिन डिस्पेंसिंग प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं। और ऑकलैंड के एक घर के बाथरूम में स्कॉर्पियन मिलने से फैमिली शॉक में आ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किसी इंपोर्टेड शिपमेंट या लगेज के थ्रू न्यूजीलैंड पहुंचा होगा। इंटरनेशनल न्यूज में यूके की एक लॉ मेकर ने इलॉन मस्क की एआई कंपनी के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया है। उनका आरोप है कि एआई जनरेटेड बिकनी इमेजेस ने उनकी प्राइवेसी और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है। माउंट एवरेस्ट से एक इंस्पायरिंग स्टोरी सामने आई है, जहां एक शेरपा जो मिसिंग और डेड माना जा रहा था, खुद क्रॉल करके एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच गया और उसकी जान भी बच गई है। स्पोर्ट्स की दुनिया में क्रिस वुड ने हाइटी के खिलाफ मैच के बाद कहा कि हाइटी ने वर्ल्ड कप इंटेंसिटी के साथ खेला, जबकि ऑल वाइट्स के लिए वो एक फ्रेंडली मैच था। वहीं फीफा ने वर्ल्ड कप स्टेडियम्स में रिफिलेबल वाटर बॉटल्स बैन कर दिया और देखते हैं अब क्या खबर आती है। क्रिकेट अपडेट में ब्लैक कैप्स को लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जहां 140 पे ऑल आउट किया था। वहां पे उसके जवाब में 61/6 विकेट खो चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। एंटरटेनमेंट से गुड न्यूज है। अमेरिकन रॉक बैंड एवेनसेंसेस ने 2027 के लिए न्यूजीलैंड में एक स्पेशल वन ऑफ शो अनाउंस किया है। और पॉलिटिक्स में वाइटांगी ट्रिब्यूनल ने ट्रीटी क्लॉजेस पर एक सुनवाई के दौरान माओरी राइट्स पर अनरिलेंटिंग असॉल्ट का कंसर्न भी सुना है। ये डिबेट अब भी गर्मा गर्म लगी हुई है।
2: लंच बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।

वेल इस आर का लंच बॉक्स स्पेशल क्वेश्चन जो है मेरी तरफ से वो ये है कि अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग का मशीन मिलती है तो कौन से टाइम पर आप जाना चाहेंगे और क्यों? जल्दी से इसका जवाब मुझे 5599 पे भेज दिए ताकि वी विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट दैट। जी हाँ, फोन उठाइए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए। लेट्स सी कितने क्रिएटिव आंसर्स आपके आते हैं। वंस इफ यू रिसीव, लेट्स से इफ यू रिसीव द टाइम ट्रैवलिंग मशीन, व्हाट एरा यू वांट टू गो एंड व्हाई? जी हाँ, 5599 इज द नंबर एंड ओनली वन हिंट इज दैट इट शुड नॉट रिलेटेड टू योर टाइम। जी हाँ, आपकी जिंदगी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एज एन आप ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं अपने बचपन में जाना चाहता हूँ या मैं अपने स्कूल टाइम पे जाना था। वो तो डेफिनेटली सभी को पता है दैट यू नो एवरीवन वांट्स टू लिव देयर ओन लाइफ की वो जो वहाँ पे मिसिंग हुए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट यू थिंक दैट यू वांट टू विजिट एंड एक्सप्लोर एंड एंजॉय?

दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: आवाज गूंजेगी।
1: लंच के मंच पे लंच बॉक्स विद केतन
2: आ गया, आ गया, आ गया।
3: वेलकम बैक, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, अभी एक बज चुके हैं और यहाँ पे भी बहुत सारी बातें करनी है। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आर में, और साथ में आपको भी मैं मौका दूंगा कि आप मुझे कॉल करिए सो दैट वी कैन एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। एंड आपके रिव्यूज रिप्लाई भी आए तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज उसके थ्रू हमें पता पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या सोचते हैं या क्या सोचते हैं। सो यस, आप बस ऐसे ही बने रहिए। शुरुआत करते हैं कन्हैया ट्विटर पे आ जा, वैसे नाम इसका चेंज हो जाना चाहिए, कन्हैया एक्स पे आ जा, एक्स ही है ना शायद ट्विटर का नाम, राइट?
1: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक इस आर का स्पेशल टॉक हम आपके लिए लेके आएंगे डिफरेंट सबसे पहले तो लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आप मैसेजेस मुझे भेज दीजिए उसके बाद बॉलीवुड की खबर भी लेके आऊंगा और लेटेस्ट खबर क्या आई है ताजा उसके बारे में भी बात होगी सो यप आप स्टे ट्यून रहे और मुझे फट से मैसेज भेज दीजिए लेकिन एक लास्ट आर में मैंने एक सवाल भी किया था आपसे कि अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग करने का मौका मिलता है तो कौन से एरा में आप जाना पसंद करेंगे द ओनली कंडीशन इज दैट यू कैन नॉट गो इनटू योर ओन लाइफ टाइमलाइन अपार्ट फ्रॉम दैट जहां आपका मन करे आप जाइए बट बताइए मुझे 5599 पे वेयर वुड यू लाइक टू गो कुछ मैसेजेस मिले हैं बट यस अभी भी आप भेज सकते हैं विच वी विल बी टॉकिंग लिटिल लेटर बट जल्दी से आप मुझे भेज दीजिए सो दैट यू नो वी कैन आई कैन शॉर्ट लिस्ट एंड आई कैन रीड आउट कि कौन सा बेस्ट आंसर है
1: Lunchbox with Ketan.
2: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है ये क्या क्या मतलब क्या
6: बहुत खुश है बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन
5: मेरे को समझ भी नहीं एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है एक दिन और इन्होंने
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है
3: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
7: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून
3: वीकडेज 6 to 10 AM
8: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वे सिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स
9: अरे सुनो मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला
10: फ्री कंटेनर तो अच्छा है लेकिन डोसा कैसा था
9: डोसा तो ठीक ही था लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है
10: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं
11: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू
12: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना
13: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
14: And award goes to Indelible Homes.
13: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
15: Kahani of Indelible Homes.
16: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian Comedy Night featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
17: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
16: Saturday 18th July 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.in.

0: लंच टाइम रेंट लाइन में आपका स्वागत है। बात करते हैं फटफट से लंच टाइम रेंट लाइन में जो आपने मैसेजेस भेजे हैं उस बारे में। वेल यस, सबसे पहले तो मैसेज आया है लीना का। वो कहती है ओनियंगा से, व्हाई डू आंटीज ऑलवेज नो योर बिजनेस बिफोर यू डू। ये तो भाई यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बट नॉट अबाउट जस्ट आंटीज बट अंकल एज वेल, नॉट इवन अंकल यार, मतलब मेरे को लगता है हर एक तरह के लोग को मैंने देखा है। सो नॉट स्पेसिफिकली अबाउट दैट, बट इसका आंसर आई डोंट नो हु वुड बी परफेक्टली गिविंग द रिप्लाई ऑन। आप अगर है, इफ देयर इज समवन ओवर हियर हु कैन काउंटर ऑन इट, फील फ्री टू डू दैट। अमित कहते हैं, हाय केतन, अमित हियर मनुकाओ से, ऑफिस मीटिंग कुड बी ईमेल्स कुड बी नथिंग। मतलब ऑफिस मीटिंग्स कुड बी ईमेल्स कुड बी नथिंग। ओके, थोड़ा सा लग रहा है मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या रहा। बट एनीवेज, केतन, आयशा हियर ग्लेन इन से, एवरी देसी मॉम्स थिंक कोल्ड वेदर, वियर स्वेटर्स और यू विल डाई टुमारो। ये तो मेरे साथ भी होता था, मेरे को मतलब मरने वाला सीन नहीं होता था, मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को वैसे करते थे कि भाई बीमार हो जाएगा ये सब है। हाँ, मतलब मरने मारने का बात तो नहीं होती थी यार। बोला केतन, विनोद हियर फ्रॉम पापाखुरा, फीजी इंडियन फैमिलीज डोंट से गुड बाय, दे डू फुल 30 मिनट्स एग्जिट सेरेमनी। आई कैन रिलेट दैट टू ब्रो, हमारे साथ भी होता, नॉट जस्ट फैमिलीज बट इवन मी एज वेल। लाइक हम बाय कहते हैं और किसी बंदे से अगर बात करना बहुत पसंद है तो बात ही खत्म नहीं, ओके बाय, फिर से बात शुरू, ओके बाय, फिर दूसरा टॉपिक आ गया, फिर उस पर बात शुरू, तो ऐसे करते करते 30 से 1 घंटा हो जाता है। एंड देन फाइनली वी एंड अप यार चाय पीने का मन कर रहा है, एंड देन वी गो टू समवेयर एंड फिर वहाँ पे भी बातें शुरू हो जाती है। पूजा हियर केतन ईस्ट ऑकलैंड से, सुपरमार्केट सेल्फ चेकआउट ऑलवेज मेक मी फील लाइक आई एम बीइंग जज्ड। अच्छा, ओके ओके, पता नहीं इसमें कैसे रिएक्ट करूं, बट ओके, थैंक यू पूजा आपके जवाब के लिए। आखिरी मैसेज है राजीव भाई का माउंट रॉस्कल से, वो कहते हैं, व्हाई डू डैड्स लोअर टीवी वॉल्यूम बट इंक्रीज देयर वॉइस व्हाइल टॉकिंग ऑन फोन। वो होता होगा ना कि लाइक सामने वाले को डिस्टर्बेंस नहीं हो, इस वजह से करते होंगे। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस, काफी क्रिएटिव मैसेज थे। ऐसे ही बस आप बने रहिए और सुनते रहिए हमारा लंच बॉक्स शो। थोड़ी देर में लेके आऊंगा लेटेस्ट खबर और उन बातों पे भी होगी जो आपने मुझे मैसेज भेजे हैं रिगार्डिंग टाइम ट्रैवलिंग।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है। अभी गिस्बन से खबर आई है दैट पुलिस का कहना है कि मंगा पापा एरिया में हुई हाउस फायर के इनिशियल इंडिकेशंस ये दिखाते हैं कि आग शायद जानबूझकर लगाई गई है। ओहो, इस फायर ने घर को काफी नुकसान पहुंचाया और इन्वेस्टिगेशंस अभी भी जारी है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि वो एक व्यक्ति से इस मामले में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल चार्जेस अनाउंस नहीं किए गए हैं। अथॉरिटीज लोकल रेसिडेंट्स से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी ने इंसिडेंट के आसपास कुछ सस्पिशियस देखा ये हो या कोई इंफॉर्मेशन हो तो पुलिस से कॉन्टैक्ट करें। इन्वेस्टिगेटर्स अब फायर के एग्जैक्ट कॉज और सरकमस्टांसिस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी गिस्बन से लेटेस्ट अपडेट। आप कनेक्टेड रहिए, मैं थोड़ी देर में आप सभी के लिए टाइम ट्रैवलिंग वाली बातें लेके आने वाला हूँ। लंच की मंच।

वेलकम बैक। ये रहे सारे मैसेज जो मैं बात करूंगा टाइम ट्रैवलिंग की, यानी कि मैंने एक सवाल किया था कि अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रैवलिंग का तो व्हाट एरा यू वुड गो। द कंडीशन वाज दैट यू कैन नॉट पुट यू इन इट एज योर टाइमलाइन। जी हाँ, आप अपनी लाइफ के टाइमलाइन के अलावा कुछ भी बता सकते थे। एंड वेरी वेल डन, एक दो को छोड़ के, आई मीन थैंक यू अगेन फॉर एवरीवन टू मैसेज मी, बट एक दो को छोड़ के सब ने अपने एरा की बातें नहीं की है, विच इज़ ग्रेट। रवि भाई कहते हैं आई वुड गो बैक टू एंशिएंट इजिप्ट जस्ट टू सी हाउ द पिरामिड्स वर एक्चुअली बिल्ड। नो यूट्यूब थियोरीज, नो डॉक्यूमेंट्री, जस्ट द रियल आंसर। ओ दैट इज ग्रेट आइडिया यार, मतलब मैंने सोचा नहीं, बट दैट्स गुड। प्रिया कहती हैं आई वुड लव टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर एंड सी व्हाट सिटीज लाइक आगरा एंड दिल्ली एक्चुअली लुक लाइक इन देयर प्राइम। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट आंसर, ग्रेट स्पॉट। आई वुड ट्रैवल टू फ्यूचर मे बी 500 ईयर्स अहेड जस्ट टू सी इफ ह्यूमंस आर लिविंग ऑन अनदर प्लैनेट्स और स्टिल आर्ग्यूइंग ऑन सोशल मीडिया। ये सही था। अंजलि कहती है आई वुड गो बैक एंड विटनेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, इमेजिन सीइंग दैट मास्टरपीस बीइंग बिल्ड। भाई दूर ही रहना पता पड़ा, शारजा ने आपको भी पकड़ लिया, मुझे कहता ना वो हाथ वाथ कटवाने का। बढ़िया। सो वंस यू कम बैक लेट अस नो कि कैसे बनाए और क्या कितनी खूबसूरती बनाए। देव कहते हैं माउंट ऑर्सल से आई वुड विजिट द टाइम ऑफ डायनासोर फ्रॉम अ वेरी सेफ डिस्टेंस। दो ये मैंने भी, या मेरे दिमाग में यही था पता है कि डायनासोर वाला देखना है, बट ऑफकोर्स अगेन कोशिश मतलब हाँ सोचने में क्या जा रहा है ना, मतलब डायनासोर है तो है, हम सोच रहे हैं कौन सा असली में आ रही टाइम ट्रैवलिंग, सो हमें काय का डर डायनासोर का। नेहा कहती है आई वुड गो टू द 1983 वर्ल्ड कप फाइनल एंड वॉच इंडिया लिफ्ट द ट्रॉफी लाइव। वाओ दैट्स ग्रेट। करण कहते हैं आई वुड ट्रैवल टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वुड बी फैसिनेटिंग टू सी हाउ पीपल लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। यार एक चीज मैंने नोटिस की है दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इंडिया। कुछ इंडिया के बाहर की भी बातें करो यार, बाहर भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, नॉट जस्ट इंडिया। आई नो दैट ऑफकोर्स मेजोरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम इंडिया, बट देर समथिंग मे बी वन ऑफ द पर्सन कैन से दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर फीजी। अरे ये तो रहा, ये दे यू गो। शिवानी कहती है आई वुड विजिट फीजी अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो टू सी वॉट आइलैंड्स लाइफ वॉज रियली लाइक बिफोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये हुई ना बात, बट थैंक यू सो मच। एक और जस्ट मैसेज आया, वो कहती हैं आई वुड लाइक टू गो टू माई मॉम्स टाइम लाइन टू सी हाउ यू नो माई मॉम एंड माई डैड मेट। अगेन दिस इज स्मार्ट मूव एक्चुअली, बिकॉज इन्होंने अपनी टाइम लाइन के बारे में नहीं बताया, बट she want to go and see mom and dad kaise mile. That's great, yeah, that's great. Thank you so much again aapke lovely messages ke liye. Aap bas bane rahiye, Bollywood ki khabar leke aata hu thodi der mein. Lunchbox with Ketan. Iske peeche na teen char ladkiyan padi hui hain.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: Well, Bollywood से एक amazing खबर आ रही है. Superstar आमिर खान ने officially confirm कर दिया है कि वो अपनी partner गौरी स्प्रॉट से शादी करने जा रहे हैं. एक्टर ने बताया है कि उनकी वेडिंग 5 जुलाई 2026 को होगी. ये अनाउंसमेंट उनकी रिलेशनशिप को पब्लिक करने के लगभग एक साल बाद आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सेरेमनी प्राइवेट और इंटीमेट होगी, जिसमें फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल होंगे. आमिर ने कहा कि दोनों अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हैं और काफ़ी कमिटेड फेस में हैं. यह आमिर खान की तीसरी शादी होगी. फैंस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उन्हें बधाइयों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं. और इसी के साथ बॉलीवुड की इस खुशखबरी पर हम देते हैं बहुत ही बढ़िया विशेज उनको हमारी तरफ से. बट यस, एक अमेजिंग बात है ना, खान से हम हमेशा बात करते हैं, खान और कपूर की. बॉलीवुड में इन खान की अगर बात करें तो ऑफकोर्स शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान, ये तीन टॉप पे रहते ही हैं. एक तरफ देखिए आमिर खान जो तीसरी शादी करने वाले हैं, दूसरी तरफ सलमान खान देखिए एक भी शादी नहीं हुई है, और बीच में शाहरुख खान है जो एक ही वाइफ से कमिटेड है. क्या बात है, मतलब तीनों एग्जांपल सेट कर रखा है इन्होंने तीनों ने. जैसे आप किस खान को फॉलो करते हैं, 5599 पे आप मुझे बता सकते हैं.

अभी की लेटेस्ट खबर, एक लेटेस्ट खबर काफी इंटरेस्टिंग भी है. इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अजीब भी है एंड नॉट हैप्पी एज वेल एट द सेम टाइम. चोरों ने एक पंप स्टेशन के निशाने बनाते हुए जमीन खोद कर अंडरग्राउंड केबलिंग चुरा ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वैसे इस रेड में लगभग 150 मीटर केबल निकाली गई है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है. अथॉरिटीज का कहना है कि इस तरह की केबल थेफ्ट सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं बल्कि असेंशियल सर्विस की को भी रिस्क में डाल सकता है. पुलिस अब भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एरिया के सीसीटीवी फुटेज और पब्लिक इंफॉर्मेशन की मदद से जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. वैसे ऑफिशियल्स ने रेसिडेंट्स से अपील भी की है कि अगर किसी ने सस्पिशियस एक्टिविटी देखी हो या कोई जानकारी हो तो पुलिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हाँ, रोटोरुआ की वैसे कहानी है बट मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी अजीब इसलिए है बिकॉज यार केबल्स चुराई हैं वो भी इतना अंदर खुदाई करके. अमेजिंग, लाइक यू नो कहाँ से आती हिम्मत इतनी यार. और प्लस ऐसी क्या जरूरत थी कि इतना नुकसान करके उनकी केबल्स भी चुरा दी है. व्हाट डू यू थिंक?

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: चांस से बारिश के आज का सनसेट होगा 5:13 पे शाम को। Playing Bollywood's biggest hits. Budget Gandhi.
1: Yeah! Lunchbox with Ketan.
0: नमस्ते, वेलकम बैक अगेन। जी हाँ, 20 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आज वैसे गर्म रहने वाला दिन, बारिश तो हो रही है, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी सी आपको फील हो सकती है, बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग दिन। आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन आपको ये मौका मिला, दैट मीन्स अगर आप वर्क फ्रॉम होम करें तो शायद आप पकौड़े या फिर चाय की जिसका लेंगे तब मजा ही आ जाएगा, राइट। वेल, मैंने भी तो यहाँ पे कॉफी पी, बट यस, एज सून एज आई फिनिश माय शो आई विल क्विकली रन एंड यू नो, घर जाते ही मैं फटाफट से चाय या तो बनाऊंगा या फिर खुशबू को रिक्वेस्ट करूंगा शी कैन मेक। यार मैम, मेरे को बनाने में दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत पता क्या है, जो टेस्ट खुशबू बनाती है ना चाय में, ओए होए होए होए, आई बेट, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ ना, यहाँ पे मुझे वैसी चाय तो नहीं मिलती, ऑनेस्टली बताऊँ तो यस। और इनफैक्ट उसके घर वाले भी वेट करते थे अंटिल खुशबू कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड देन शी विल ओनली गोइंग टू प्रिपेयर द टी, बिकॉज ज़्यादा काम नहीं करवाते थे उससे, लेकिन टी खुशबू ही बनाती थी, और सेम हो गया। इनफैक्ट मेरे दोस्त जब भी मेरे घर आते हैं वो एक चीज के लिए मना नहीं करते हैं और बड़ी बेशर्मी से बोल देते हैं, हाँ भाई चाय प्लीज। जोक्स अपार्ट, बट शी लव टू प्रिपेयर द टी, यस। बट यस, आप बने रहिए, बिकॉज इस साल में भी बहुत सारी बातें होने वाली, लेटेस्ट खबर के साथ साथ आपको और भी ताज़ा ताज़ा खबरें देने वाली, कहीं मत जाइए और सुनते रहिए आज के इस लंच बॉक्स शो में अंटिल 3। उसके बाद सैंडी जुड़ेंगे इन द कॉफी ब्रेक एंड देन ड्राइव शो में रुजवी उनका साथ देंगे।
1: बचाओ क्या,

0: चलिए लेट्स टॉक अबाउट पॉडकास्ट। अभी हमारे लेटेस्ट जो पॉडकास्ट उसकी रिलीज हुई है अनफिल्टर्ड में, सैंडी एंड रुज़मैन ने इंटरव्यू लिया है WWE सुपरस्टार शैंकी सिंह, जो खुद एक 7 फुट टॉल है, जी हाँ, और रेसलर भी हैं, बॉलीवुड एक्टर भी हैं। उन बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है, बहुत ही बढ़िया। वैसे उनको ज़्यादा रोल नहीं मिला है, बट ही एवरीवन कैन सी हिम ओवर देयर। वेल यस, मैं बात कर रहा हूँ शैंकी सिंह की, जो यहाँ पे आए थे और उन्होंने काफ़ी पोल खोली है WWE की। जी हाँ, वो सच है नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और साथ में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विथ अंडरटेकर, जॉन सिना, ग्रेट खाली, जी हाँ ग्रेट खाली के साथ भी, और प्लस वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इंडिया में, रेसलिंग लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, उसके बारे में बात की है। एंड ऑफकोर्स बॉलीवुड में काफ़ी कुछ फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है, उनका यशराज स्टूडियो में विजिट करना का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी उन्होंने बताया है, और साथ में सलमान खान के साथ एक्सपीरियंस, सलमान खान से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या बोला इन्हें। जी हाँ, तो ये आप डेफिनेटली सुनिए पॉडकास्ट। आप हमें ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक लिंक पहुंच जाए और एंजॉय कर सकें। वैसे वीडियो प्रोडक्शन डन बाय इंस्पायर मीडिया वर्क्स, जो कि मार्केटिंग, रियल स्टेट और इवेंट्स वीडियोस करती है। तो अगर आपको कोई भी काम करवाना हो मार्केटिंग से लेके या फिर रियल स्टेट से लेके या फिर इवेंट वीडियोस, तो यू नो हु टू कॉन्टैक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी केतन कुमार। ऑफकोर्स आप वैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जाके भी इंस्पायर मीडिया वर्क्स सर्च कर सकते हैं और उन्हें वहाँ पे DM भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी सवाल जवाब आप डायरेक्टली उनसे कर सकें। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का।
1: हाँ। वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर।
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
2: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: Bunnings lowest prices? Nailed.
7: Grab 30 seconds 1 litre mould off just $7.90. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
8: Bunnings Warehouse.
9: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
10: Get ready for fun and romance. Hai Jawani To Ishq Hona Hai, starring Varun Dhawan, Mrunal Thakur and Pooja Hegde.
11: Are you single?
10: Fully single.
12: Aisi love story aur

0: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
1: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
0: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
1: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
2: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: या रिप्ले।
1: स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ब्लैक कैप्स के स्टार फास्ट बॉलर मैट हेनरी को लेकर अच्छी खबर आ रही है। लॉर्ड्स टेस्ट में बैक आपसी की वजह से उन्हें फील्ड छोड़नी पड़ी थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट की उम्मीद है कि वो मैच में दोबारा बॉलिंग कर पाएंगे। हेनरी न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक के की प्लेयर हैं और उनकी फिटनेस टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच के पहले ही वो हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवरी करके स्क्वाड में वापस आए हैं। टीम ऑफिशियल अब उनकी कंडीशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और फाइनल डिसीजन बहुत ही जल्द पता पड़ेगा। बट यस, जिस तरह का स्कोर देख रहे हैं वो भी बहुत ही खास नहीं है। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 140 रन बनाए हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा रन हैरी ब्रुक के ही थे, 56 रन उन्होंने बनाए थे। तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी खासी लीड ले लेगा यहाँ पे, बट उसके जवाब में और एक्चुअली मैट हेनरी ने विकेट भी लिया, सो यानी कि नहीं, एक्चुअली उन्होंने नहीं विकेट लिया, मैट हेनरी खेल रहे हैं, बट उसके जवाब में फर्स्ट इनिंग जो न्यूजीलैंड की रही वो बिल्कुल भी खास नहीं रही है। सबसे ज़्यादा ग्लेन फिलिप्स के ही रन है जिन्होंने 31 रन बनाए हैं और नेथन स्मिथ जो कि 6 रन पे बैटिंग कर रहे हैं उनके साथ, एंड उसके अलावा कोई भी खास चल नहीं पाया। रचिन रविंद्र खुद पहली बॉल पे ही आउट हो गए LBW। वेल लेट्स सी, 60 पे 6 हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, क्या कितना लंबा जाता है देखते हैं। बट उसके अलावा और भी मैचेस हैं जैसे कि आयरलैंड वर्सेस पाक के बीच में मैच है, जो एक्चुअली मैच जो है वो अबंडन हो चुका है, कुड बी बारिश की वजह से, फॉर वुमेन के बीच में मैच है ये, एंड देखते हैं और कौन कौन से मैचेस आते हैं। वी विल डेफिनेटली गोइंग टू अपडेट यू।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेल, एक बहुत ही बढ़िया थिएटर होने जा रहा है, इंडियन इंक थिएटर कंपनी आप सभी के लिए लेके आया है बलून डॉग। बलून डॉग क्या है? ये बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर की बी लव स्टोरी काबुली वाला पे इंस्पायर्ड है और इसे रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय जस्टिन लेविस, जिसमें जस्टिन लेविस ने जी हाँ रिटर्न भी किया, उनका साथ दिया है जेकब राजन ने भी। अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन फिर से आ चुके हैं स्टेज पे आप सभी के सामने बलून डॉग। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, 21st सेंचुरी ऑकलैंड। दिस ब्यूटीफुल टेंडर टेल फॉलोज द अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन 5 साल की बच्ची एंड लोनली माइग्रेंट वर्कर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया है, आप इसे देखिए जाके क्यू थिएटर इन ऑकलैंड। 3rd से लेके 20th of June इतने दिन तक चल रहा है, आज 5 तारीख हो चुकी है, अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है ऑलरेडी। अगर आप डबल पास जीतना चाहते हैं तो आप मुझे BD बलून डॉग का इनिशियल है BD लिख के मुझे 5599 पे भेज दीजिए। साथ में ऑफकोर्स डोंट फॉरगेट टू एक्सपीरियंस दिस अमेजिंग, आप iticket.co.nz पे जाके इसके टिकट भी खरीद सकते हैं। अमेजिंग शो है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू बाई टिकट एंड गेट इट, गो एंड वॉच इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू द थिएटर।

0: वेल, अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि क्राइस्टचर्च की शीना हेमंस, जिन्होंने 2023 में अपनी 27 ईयर्स की बेटी लॉरेन को एक ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था, बेरिवमेंट लीव बनाने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड में मिलने वाले सिर्फ 3 दिन के बेरिवमेंट लीव में फ्यूनरल अरेंज करना और ग्रीफ हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उन्होंने इस रूल को इंसल्टिंग बताया है। शीना ने एक पेटिशन भी शुरू की है जिसमें मिनिमम बेरिवमेंट लीव के 3 दिन से बढ़ाकर हर 10 दिन करने की मांग की गई है। और उनका मानना है कि लोगों को अपने सबसे मुश्किल वक्त में एनुअल लीव, सिक लीव या अनपेड लीव लेने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। वैसे फिलहाल न्यूजीलैंड लॉ के तहत क्लोज फैमिली मेंबर्स ने के निधन पर एलिजिबल एम्प्लॉयज को मिनिमम 3 दिन की पेड बेरिवमेंट लीव मिलती है। और ये मुद्दा अब देश भर में वर्कप्लेस वेलबींग और एम्प्लॉय सपोर्ट पर एक नई चर्चा शुरू कर चुका है। What do you think? Is she taking good decision? I mean, I personally feel that जो उन्होंने petition file करने का जो किया है, I feel it makes sense because you definitely need enough time to. I know that people won't be able to be normal even in 10 days as well, but at least 10 days is way better than the 3 days because it's time pe at least you will have enough time. You will enough time to at least come back in a normal routine. But yes, I mean, it is very, very close, thin line. So yes, but I would say, aapko kya lagta hai? What do you think? Is that 10 days is enough or you think the 10 days is also not enough? Ya phir 3 din hi rakhna chahiye? 5529 pe aap mujhe bata sakte hain. Lunchbox
1: with Ketan. Iske peeche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
2: Iske peeche?
3: Haan. 80s ke retro gaane.

0: टॉक।
1: वेल टेक टॉक में आपका स्वागत है और अभी बात करते हैं कुछ बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से। काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट में लेके आया हूँ। जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की बात होती है, हम अक्सर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और रोबोट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी एआई अपॉर्चुनिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने नहीं बल्कि उसे वेल्थ क्रिएट करने की है। आइडिया ये है कि एआई को बिजनेसेस, फार्मिंग, हेल्थ केयर और प्रोफेशनल सर्विस में स्मार्ट तरीके से यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इससे कंपनी ज्यादा एफिशिएंट बनेगी, नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। वैसे एआई का असली वैल्यू सिर्फ टूल्स डेवलप करने में नहीं बल्कि उन टूल्स को यूज करना करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर न्यूजीलैंड इनोवेशन और को कमर्शियल सक्सेस में बदल पाए तो एआई देश के फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को एक मेजर ड्राइवर बना सकता है। क्या लगता है आपको? आई मीन जो आर्टिकल आया है ये सही है? वेल आई पर्सनली फील दैट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये भी है, क्योंकि इससे एक चीज़ तो हो सकती है दैट इट विल मेक जो जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जैसे जॉब्स हैं या फिर फाइनेंशियल चीज़ें हैं या फिर हेल्थ केयर है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, उनका काम तो बहुत ही इम्प्रूव होगा, जिससे ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को ही फ़ायदा होगा, ना कि अदर साइड जहाँ पे लोगों को डर लगे जा रहा है दैट एआई गोना लूज द जॉब। बट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, मैंने एक आर्टिकल भी देखा है, आई एम वेरी वेरी फेवर ऑफ इट दैट एआई विल नॉट गोइंग टू टेक अवे जॉब फ्रॉम यू, इट विल बी द पर्सन हु इज यू नो हैंडलिंग और ट्रैकिंग द एआई। जी हाँ, तो इसलिए कहता हूँ कि आप भी अपना एआई से चीज़ों को सीखें, सिर्फ चैट जीपीटी या जेमिनी पर ही सीमित ना रहें। देयर आर प्लेंटी ऑफ मेनी एआई टूल्स अवेलेबल आउटसाइड जिसे आप सीख सकते हैं। इनिशियली ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करिए, यू नेवर नो कल को सॉफ्टवेयर के बाद आपको हार्डवेयर भी यूज़ करना पड़े। सो बेटर यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली सो दैट यू कैन कम्पीट अमॉन्ग द रनिंग सिनेरियो। जी हाँ, बट यस ये थी आज की टेक टॉक की कहानी मेरी जुबानी।

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, आपकी बातें, मतलब मेरी बातें एक्चुअली, और आपके मैसेजेस. बट ऐसे बने रहिए, मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर से मंडे को, मंडे टू फ्राइडे लंच बॉक्स शो, नए तरीके से, नई बातों के साथ और नई खबरों के साथ, 12 से 3. जी हाँ, अभी के लिए मैं निकलता हूँ, बट यस, डोंट गो एनीवेयर बिकॉज सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली इन द कॉफी ब्रेक, और उसके बाद रूस भी उनका साथ देंगे इन द ड्राइव शो. बट मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे. बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हैव अ नाइस वीकेंड.

रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट वॉज कि साउथ एशियन सोसाइटी जो यहाँ पे है ना, कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम हर जगह पे ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते हैं, एंड या फिर कई बार वो मुद्दे जो है हमारी कम्युनिटी को लेके कई बार इग्नोर भी हो जाते हैं, वो बातें भी, वो टॉपिक्स भी, और कई बार घर पे भी उसके बारे में खुल के बात नहीं हो रही होती है. सो दिस वॉज वन रीज़न हम अनफिल्टर्ड लेके आए. अनफिल्टर्ड में हम कई बार ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग के बारे में बात भी करते हैं, उन टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे घर पे ओपनली डिस्कशन नहीं होती है, तो हम इनकरेज करते हैं उनकी डिस्कशंस करने के लिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए, हमारे लिए मैटर बहुत करते हैं. तो ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं, एंड जब ऐसे टॉपिक्स होते हैं तो वहाँ पे हम स्पेशलिस्ट को भी लेके आते हैं ताकि एक स्पेशलिस्ट का व्यू जो है वो आपके साथ हम शेयर करें. हमने मेंटल हेल्थ से लेके, यू नो, बॉडी को लेके, हर चीज़ को लेके, यू नो, एलजीबीटी की कम्युनिटी को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके हमने एक्चुअली में पॉडकास्ट में बातें की है, डिस्कशंस की है, कन्वर्सेशंस की है एक्चुअली में हमने, और वो कन्वर्सेशंस हम आप तक पहुंचाते हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक कन्वर्सेशन सुनते हैं तो उसमें से हम कुछ बातें अपने साथ लेके चलते हैं बाद में कि ओके, ये पूरे के पूरे कन्वर्सेशन से अगर आप 40 मिनट्स का पॉडकास्ट सुनोगे, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स का कुछ तो आपको वहाँ पे मिलेगा जो आपके हेल्पफुल रहेगा किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी चीज़ को लेके. सो इसलिए ये पॉडकास्ट हम जो आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है. एंड द बोनस पॉइंट इज़ इट्स फ्री टू लिसन. एकदम फ्री में आप ये जो पॉडकास्ट है ये सुन सकते हैं. What you have to do is रोवा पे जाइए, अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूज़बे ढूंढिए, और वहाँ पे आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएगा. और what you can do is go on Spotify, go on JioSaavn, ये सारी जगह पे जाइए, आपको मिल जाएगा. हम .rova.nz पे जाएंगे, वहाँ पे ढूंढेंगे अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूज़बे, वहाँ पर भी हम आपको मिल जाएंगे. वी आर एवरीवेयर, सो इट्स वेरी ईजी टू एक्सेस दिस पॉडकास्ट एज वेल. एंड बहुत अच्छा लगता है, वैसे रुज़बे आएगा तो उसके बारे में और भी बात करेंगे, बट एक्चुअली फील्स रियली गुड कि हमारी लैंग्वेज का एक पॉडकास्ट उस जगह पे पहुंचा है, उसको अवार्ड मिलता है जहाँ पे न्यूजीलैंड के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के जो पॉडकास्ट है वहाँ पे होते हैं, रेडियो शोज़ वहाँ पे होते हैं. यू नो, जिस स्टेज पे हम माइक हॉस्किंग की स्पीच सुनते हैं कि वो एक स्पीच वहाँ पे दे रहे हैं, उसी स्टेज पे अपना नाम देखना कि अवार्ड मिला है, ये सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए भी बहुत बड़ी प्राउड की बात है, बिकॉज ये हमारी कम्युनिटी को बताता है कि कैसे हमारी कम्युनिटी के अंदर जो कन्वर्सेशंस होती है उसको वैलिडेट करता है. ये कन्वर्सेशंस कहीं ना कहीं पे मैटर करती है. सो या, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए. बेस्ट एशियन पॉडकास्ट 2026 का अवार्ड एक बार फिर से मिल चुका है अनफिल्टर्ड को.

0: 314 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए. सपना का यहाँ पे मैसेज आया है एंड जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा, इन्होंने अपना नाम तो यहाँ पे नहीं बताया है, बट थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज. वेल, आज आपके साथ शेयर करती हूँ ट्रेल्स ओवर द वीकेंड अगर आप करना चाहते हैं. आज वेदर थोड़ा ऐसा है, लेकिन वीकेंड के वेदर की ओर देखा जाए कल आफ्टरनून के बाद थोड़ा बहुत सेटल हो जाएगा. संडे लुक्स प्रिटी गुड. सो अगर आपको वॉकिंग वगैरह करने के लिए या फिर कुछ ट्रैक्स कवर करने के लिए, हाइकिंग के लिए बाहर जाना है, तो फ्यू हाइक्स जो है ये एक्चुअली में आप जा सकते हैं. उमाना वनाऊ ट्रैक एक है जो कि वेस्ट ऑकलैंड में है. कोस्टल व्यूज़ है और ड्रामेटिक सीनरी भी है इसकी. इसका टाइम है तकरीबन 2 to 3 hours एंड 5 kilometers का इसका डिस्टेंस है. डिफ़िकल्टी इज़ मॉडरेट, सो मेक श्योर कि यू हैव इनफ वाटर विद यू. एंड खाने पीने का सामान जब भी आप हाइकिंग पे जाते हैं ना, तो आपको बहुत ही लाइट रखना चाहिए. व्हाट आई डू इज़ कि ड्राई फ्रूट रखती हूँ, या फिर आप जो यू नो नट बार या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ अपने बैग में रख सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू कैरी. बिकॉज जब वॉक करना होता है ना, तब ज़्यादा हैवी लोड नहीं उठाया जाता है, वो भी अगर हाइकिंग्स पे आप जा रहे हैं तो. सो मॉडरेट वहाँ का डिफ़िकल्टी लेवल है उमाना वनाऊ ट्रैक का. वहाँ पे रिज लाइन वॉकिंग भी है एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल व्यूज़ ओवर द फटीपू एंड मेनकाऊ हार्बर. सो इट्स फील मच मोर रिमोट देन मोस्ट ऑफ द ऑकलैंड ट्रैक. सो इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सीनिक हाइक्स इन वाइताकरे. तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं. सो कुछ और भी हाइक्स है, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताई थी, जो मैंने लास्ट वीकेंड पे की थी, इट वाज निहोटुपू फॉल्स एंड डैम. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जब आप वॉक करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखाई देती है. बेसिकली 3 waterfalls है इन टोटल. तो एक बड़ी है, बाकी 2 जो है वो छोटी छोटी वाटरफॉल्स है. सो पहले आपको एक वाटरफॉल दिखाई देती है, लेकिन वो वाटरफॉल पे नहाना मना है, स्विमिंग मना है वहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा. पर इट्स अ वेरी नाइस स्पॉट, वहाँ पे फैमिली फ्रेंडली है, बच्चों के साथ एक्चुअली में ये वॉक अप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी. लेकिन उसके आप और भी ज़्यादा आगे चलते हैं, देन देर इज़ अ क्वाइट अ वॉक और आपको बहुत ही ब्यूटीफुल डैम जो है ये दिखाई देती है, जो कि हिस्टोरिकल डैम है, बहुत ही पुरानी डैम है. एंड उसकी एक कहानी भी है जो वहाँ पर आपको पता चलेगी. उसके भी और आगे आप जाते हैं 5-6 minutes तो आपको एक पिकनिक एरिया दिखाई देगा. सो इट्स ईजी आई विल से 45 minutes रिटर्न टू द फॉल्स है. सो तकरीबन आपको टोटल जो हाइक है वो करने में 2 hours 1.5 or 2 hours जो है रिटर्न लगने वाले हैं. सो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग्स जो है ये आप करके जा सकते हैं. सो दिस वॉज निहोटुपू फॉल्स एंड डैम, जो कि एक्चुअली में आप कर सकते हैं. एंड ऑल्सो सलेश, थैंक यू सो मच, आपका भी मैसेज आया है. फॉर द ग्रीटिंग्स एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फेवरेट टीम, थैंक यू. वेल, थैंक यू सो मच आपके लव के लिए गाइस. एंड यस, इसके बारे में जब रुजबे आएगा तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, वो और भी ज़्यादा बात करेगा इसके बारे में. तो या विल टेक द कॉल्स देन एज वेल.
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी. उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती और सब बस कर देते सब.
2: Keep calm because Punjabi swag is on.
3: Hey, hey, maje diye maje diye mombatti hai pehle dino tere utte akh rakhiye tere bina area ch hor kudi da na dil mangiye te.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
5: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a Shower Dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every Shower Dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
6: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आम छे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800-4SUN-TOURS. दैट्स 0800-478-686. लिमिटेड स्पेसेस.
7: Something super is coming to Super Cheap Auto this weekend. Get 25% off store-wide. Save on Penrite, NGK, Bowden Zone and more. Starts tomorrow, ends Sunday. T's and C's apply. Make it super. Super Cheap Auto.
8: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Cool. Getting to work? Easy. Coffee with friends? Just go. The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
9: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं.
10: ऑकलैंड का ट्रस्टेड नाम RPS टायर्स. कार, SUV, ट्रक या फोकलिफ्ट, हर व्हीकल के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स, पार्ट्स एंड टूल्स. डायरेक्ट इंपोर्टर्स ऑफ रोड वन एंड अदर क्वालिटी टायर्स विद अ सॉलिड प्राइस बीट गारंटी. 4x26 ईस्ट तमाकी रोड, पापा टोटोए, प्लस 24 आवर मोबाइल सर्विस. फॉर बल्क ऑर्डर्स कॉल रॉन ऑन 0221753941 और विजिट rpstires.co.nz और देयर फेसबुक पेज. RPS टायर्स, ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट.
11: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
11: हम playing Bollywood's biggest hits. Coffee break with Sandy. Bollywood's most wanted.
13: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ.
14: मैं लाऊं अपना A game.
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

राघव चेतनिया, रुआ के एंड महमूद, इनकी आवाज़ में ये गाना आप जरूरत है। रुआ के वैसे बहुत ही इंडी टाइप ऑफ गाने होते हैं अभी तक जो इनके बॉलीवुड में आए हैं। वेल, ये गाना काफ़ी ज़्यादा हिट जा रहा है, कॉकटेल 2 मूवी का काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एक प्ले है जिसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, इंडियन इंक थिएटर कंपनी का बैलून डॉग, जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। इसका डबल पास जीतने का आज आपके पास आखिरी मौका है, तो आपको करना क्या है? सो, इसके लिए आपको यहाँ पे एंट्रीज भेजनी है 5599 पर, BD एज इन बैलून डॉग स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599। सो, ये एक अवार्ड विनिंग प्ले है बेसिकली, जहाँ पे जैकब राजन, जो कि बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं, इन्होंने लिखा है जस्टिन लुइस के साथ, एंड जस्टिन लुइस इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। सो इट्स अ वेरी मूविंग स्टोरी विच इज़ इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी काबुलीवाला, लेकिन 21st सेंचुरी ऑकलैंड के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप होती है बिटवीन 5-year-old एंड अ लोनली माइग्रेंट वर्कर। सो ये क्यू थिएटर में हो रहा है एंड एवरी इवनिंग होता है टिल 20th of June। आप भी वहाँ पर जा सकते हैं, इट विल बी अ गुड गेट अवे एज वेल अगर आप जाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर कुलीग्स के साथ। और अगर यहाँ पे आप टिकट जीतना चाहते हैं, आखिरी मौका है आज ऑन एयर टिकट जीतने का। BD स्पेस अपना नाम लिख के भेजिए 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, जहाँ पे इस थिएटर के लिए, इस प्ले के लिए टिकट आपके नाम हो सकती है।

0: 3:37 हुए हैं या 38 अभी टू बी प्रिसाइज ऑन द 5th ऑफ जून. गुड आफ्टरनून सैंडी.
1: गुड आफ्टरनून रिज़बे, कैसे
0: हो? पता है मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ?
1: क्यों?
0: क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज आया है सैंडी, और इस मैसेज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ने ऐसे ही बात करनी चाहिए.
1: या ये मैसेज तुम पढ़ के सुनाना चाहते हो?
0: ये मैसेज मुझे लगता है कि आपने पढ़ना चाहिए सैंडी.
1: मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम पढ़ो ना, इट्स ओके.
0: मैं पढ़ता हूं.
1: तुम इसी आवाज में पढ़ो.
0: मेनी कांग्रेचुलेशंस गाइस टू द लेडी विद द मोस्ट ब्यूटीफुल लाफ्टर. ये थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर दिया यहाँ पे. लेकिन एंड टू द गाय हुज वॉइस इज जस्ट टू सेक्सी. फिर उसने विंक भी किया है वहां पे और ऐसा हार्ट बनाया एक. कीप रॉकिंग और फिर हार्ट और उसके नीचे फुल स्टॉप.
1: ये हार्ट ही है.
0: हाँ वही.
1: दिल पिघल रहा है वो.
0: अ वर्ड टू डिस्क्राइब माय वीक. फैंटास्टिक.
1: या वो मैंने पूछा था कैसा आपका हफ्ता गया.
0: अच्छा अच्छा, वो सब इररिलेवेंट है. वो गाय हुज वॉइस इज जस्ट टू सेक्सी.
1: या वेरी फनी. मोस्ट ब्यूटीफुल लाफ्टर भी रिलेवेंट है.
0: नहीं वो थोड़ा वो
1: वो कुछ एग्जैगरेट नहीं किया. मुझे तो लगता है कि लाइट एग्जैगरेट है.
0: हो सकता है. एनीवे हेटर्स विल हेट. बट गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है. आज ड्राइव शो हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर लिया बिकॉज ओकेजन भी सच
1: ओकेजन है. कांग्रेचुलेशंस रिज़बे.
0: कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. एंड आई थिंक वो मेरे को ऐसा अच्छा सा वो ऐसा सेलिब्रेशन अवार्ड वाला ऐसा
1: वो ढूंढ के रखना,
0: वो अभी नहीं मिल रहा है. बट एनीवे द पॉइंट इज दैट 3 times इन अ रो
1: हैट्रिक हैट्रिक बना लिए बेस्ट एशियन पॉडकास्ट. और मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी. फिर मैंने बोला कि रुज़बे आने दो, फिर बात करते हो, बिकॉज वो सब कुछ दोबारा बोलना पड़ेगा ना.
0: अच्छा ऐसा. नहीं नहीं, मैं नहीं ज्यादा बोलूंगा यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि I think now we have even a bigger responsibility on our head.
1: 100%.
0: Because कल हमने रात को हमने बाद में साथ में डिनर किया कल.
1: Yeah, yeah.
0: And वो टाइम पे हमने डिस्कवर किया कि you know.
1: Oh Sid, congrats. Thank you
0: Sid. But वो टाइम पे हमने डिस्कवर किया कि देखो 3 तक ठीक है, बट अभी हमको 5 तक जाना है.
1: पांच उंगलियां कंप्लीट करनी है.
0: पांच उंगलियां कंप्लीट करनी है. सो वी हैव अ बिगर टारगेट ऑन हेड. एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल योर एफर्ट. क्योंकि देखो पॉडकास्टिंग इज नॉट इजी.
1: इट इज नॉट. या
0: इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ परसिवरेंस एंड फॉर समथिंग दैट डजंट गिव यू एनी मॉनिटरी रिटर्न. फिर भी उस चीज को करते रहना लगातार हर साल.
1: और वो हमारा पता क्या है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट ही होता है.
0: yeah.
1: और मैं वो बात भी कर रही थी कि द रीजन व्हाई वी क्रिएटेड दिस पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड, वो यही रीजन था कि साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए
0: एक वॉइस होना चाहिए. हमारा
1: एक वॉइस होना चाहिए. नो ऑल्सो वो टॉपिक्स जो है जो कि मे बी उनकी वॉइस शायद मेन स्ट्रीम तक नहीं पहुंचती है, वहां पे डिस्कशंस नहीं होते हैं. तो हम इसलिए ये पॉडकास्ट लेके आए ताकि हम वो टॉपिक्स को डिस्कस करें. इवन ऐसे टॉपिक जिसके बारे में हम अक्सर स्क्रॉलिंग करते हैं लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते हैं.
0: या लाइक या वी डोंट ओनली फोकस ऑन वन काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पॉडकास्ट आई थिंक. कि हम नॉर्मल ऐसे बकवास बातें भी उस पर करते हैं क्योंकि कभी कभार जिंदगी में ना बकवास ही जरूरी है. क्योंकि बाकी स्ट्रेस बहुत है लाइफ में.
1: उसमें भी हम काफी टॉपिक्स ऐसे लेके आते हैं जहां से आप कुछ तो लेके जाएंगे.
0: यस 100%.
1: सो इसलिए पॉडकास्ट को अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज डू लिसन. एंड वो हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स लेके आने के लिए.
0: जी.
1: अपकमिंग कुछ पॉडकास्ट है जैसे कि राइट नाउ, अभी WWE के बारे में था वो पॉडकास्ट. अपकमिंग हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट आने वाले हैं. आई कैन वी कैन ऑलवेज से कि किस चीज़ के ऊपर है. सो वन ऑफ द टॉपिक विल बी, जो कि बहुत ही जल्दी हम रिलीज करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक रुज़बे.
0: जी.
1: सो ये जो टॉपिक है दिस इज अबाउट अ मेडिकल कंडीशन थैलेसीमिया के बारे में, जो कि साउथ एशियन कम्युनिटी के बीच में सबसे ज़्यादा है. सो उसका रीज़न क्या है, इग्नोर कैसे होती है और कैसे किसी को पता चल सकता है, कैसे उसके ऊपर काम हो सकता है, everything is in this podcast.
0: It's a very very important I would say topic that we should all know about.
1: Yeah.
0: क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप avoid कर सकते हो. And thalassemia is one such thing that could be avoided.
1: It can be. Yeah.
0: And उसके बारे में भी हमने बात की इसके ऊपर.
1: So वो एक podcast आएगा और उसके बाद आपके लिए जो podcast आने वाला है वो है AI के ऊपर. Everyone is talking about AI, ChatGPT, Gemini, और भी बहुत कुछ.
0: And thing is that we have seen so many podcasts. India में काफी podcasts बने इसके ऊपर. US में काफी podcasts बने इसके ऊपर. But no one is talking about the New Zealand scene.
1: सो न्यूजीलैंड में एआई का क्या सीन है? क्या एआई न्यूजीलैंड में एक थ्रेट है या फिर ब्लेसिंग है? अगर आपको शुरू करना है, कैसे शुरू कर सकते हैं? इस सब की चीज़ों के बारे में हमने न्यूजीलैंड के एआई के एक्सपर्ट के साथ हमने बातें की है. सो वो पॉडकास्ट भी बहुत ही जल्दी आपके लिए रिलीज होगा.
0: एंड दैट वन इज लाइक अ वेरी इजी 101 स्टेप टू स्टेप गाइड बेसिकली,
1: बिकॉज उसमें उन्होंने हमें ऐसे समझाया जैसे एक 10 साल के बच्चे को समझाते हैं
0: जी.
1: तो उस वजह से हमने अंडरस्टैंड किया है चीज़ों को, तो जो आपको भी समझ में आएगा. एंड ये चीज,
0: नॉट दैट यू आर 10 year old,
1: बट यू नो इट्स इजी, बिकॉज कई बार ये टॉपिक सुन के ऐसा लगता है कि बड़ा हैवी टॉपिक होगा यार ये, शायद समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए हम इसलिए ऐसे सवाल उनसे पूछते हैं
0: जी. सो ये सब आ रहा है आपके लिए, लेकिन अभी मैं बस रुका हूँ. ये मैसेज किसने किया है यार, योर वॉइस इज जस्ट टू सेक्सी. इनसे बात करने का अगर मौका मिले तो बहुत मजा आएगा. सैंडी
1: तुम बोल दो उनको कि कॉल करने के लिए.
0: 0048666 इज द नंबर. गिव अस अ कॉल ओवर हियर, वी'd लाइक टू टॉक टू यू.
1: और अगर आपने हमारे पॉडकास्ट सुने हैं अभी तक, आपको कौन सा पॉडकास्ट सबसे अच्छा लगा है एंड क्या टॉपिक आप चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में आना चाहिए, प्लीज लेट अस नो 5599 पर.
2: कॉफी ब्रेक विद सैंडी. हमको गारंटी दी थी कि तुम सुशील हो, सर्वगुण संपन्न हो, अब दिखाओ.
3: हम
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
7: Attention please, I'm calling this meeting to order to announce a bloody important meeting.
8: A point of order, Madam Chairperson, isn't this a bloody important meeting?
7: No, not as important as our next bloody important meeting. We're giving blood and plasma as a blood group. All in favour say aye.
9: Aye.
10: This National Blood Donor Week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book and then send that bloody important meeting invite. Give blood, give plasma, save lives.
11: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
12: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
11: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
13: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
14: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
15: Indelible Homes, your building expert.
16: Stretch your budget further at Mitre 10. Clean up with a Bosch 15-litre wet and dry vacuum cleaner, now just $129. And score 20% off Cordtech work lights. T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
17: For the first time ever at The Warehouse, buy one, get one half price across all Living & Co products. Shop over 7,000 items, including appliances, bedding, furniture and so much more. Don't miss this incredible deal this weekend only at The Warehouse. Conditions apply.

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. हमारे साथ यहाँ पे काफी मैसेजेस आए हैं, दो इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं पढ़ना चाहूंगा और विजय के लिए प्लीज रिकॉर्ड करना. एक तो है सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट माई नेम, वो जिन्होंने कहा ना सेक्सी वॉइस, उन्होंने कहा सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट माई नेम, इट्स शालिनी, आई एम फ्रॉम फीजी एंड आई लव लिसनिंग टू यू बोथ, लिसन टू अ फ्यू पॉडकास्ट डन बाई यू गाइज, इट्स रियली वेरी इंसाइटफुल. थैंक यू सो मच शालिनी.
1: थैंक यू शालिनी.
0: एंड एक और आया सैंडी मैसेज, प्लीज आपने पढ़ना चाहिए वो.
1: नहीं नहीं तुम पढ़ो ना,
0: नहीं ना प्लीज,
1: मैं पढूं.
0: हाँ प्लीज प्लीज.
1: रुज़बे यू आर माय मोस्ट फेवरेट आरजे एज वेल.
0: ये थैंक यू. सुन रहा है तू?
1: या
0: पेमेंट बनाओ. नहीं नहीं जस्ट किडिंग यार, दिस इज नॉट फॉर पेमेंट, दिस इज मोर फॉर द लव फॉर रेडियो यू नो दैट वी डू.
1: यस पैशन,
0: इट्स द पैशन. मत बोलो यार, पैशन बोल बोल के लोग बहुत फायदा उठा जाते हैं सैंडी.
1: हर एक चीज में नहीं पैशन का फायदा उठाना चाहिए ना.
0: प्रशांत का भी कॉल आ रहा है यार, प्रशांत से बात करते हैं. हाँ प्रशांत बोलिए.
2: Congratulations to the Hindi radios, Mike Hoskins and Heather Dupont Jalan.
1: आपने वीडियो देखा है क्या फेसबुक पे जाके?
2: आज सुबह ही देखा था.
1: ओके ओ नो.
0: अच्छा पहली बार ऐसी चीजें मैंने नहीं बोली और सैंडी ने बोली है.
1: वही ना, हर किसी ने पिक कर लिया वो.
0: थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच यार.
2: आप दोनों को सुनने से पहले मैं इन दोनों को सुनता था बहुत सालों से.
1: ओके
0: क्या बात कर रहे हो, मतलब हम तो मजाक में ले रहे थे, आपने सीरियसली ले लिया इसको.
2: मैं हिंदी रेडियो बहुत सालों के बाद सुनना शुरू किया यहाँ पे.
1: ओके
0: क्या बात है यार.
2: पहले तराना सुनता था बट उतना एंजॉयमेंट नहीं था.
0: अच्छा
2: तो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू.
1: थैंक यू सो मच प्रशांत, रियली अप्रिशिएट.
2: थैंक्स अ लॉट.
0: थैंक यू मैम. थैंक यू. हेलो बोलिए.
3: हेलो कैसे हैं आप दोनों?
0: अरे
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास.
0: आप कैसे हो?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ, वेदर के मजा ले रहा हूँ.
0: अरे वेदर तो लेकिन ऐसा इतना ग्रेट नहीं है ना, आज तो तूफान उफान आने वाला है ऐसा सुना.
1: हाँ थंडरस्टॉर्म वार्निंग है.
3: मेरा भी जॉब खत्म होने वाला है ना.
1: ओके गुड. नाइस,
3: बस लास्ट वन आवर बचा है फिर फिनिश. तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन यार आप लोगों को.
1: थैंक यू.
3: बहुत मुबारक है आपको.
1: थैंक यू
3: और हमेशा ऐसे ही हमारा नाम रोशन करो.
0: अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच यार.
1: ये अच्छा लगा जो बोला है.
0: आपके दुआएं और आपके जो यू नो क्या बोलते हैं उसको, जो आपका साथ है वो अगर रहा ना तो बस ऐसे ही झंडे गाड़ते रहेंगे
3: भाई जब तक अपन न्यूजीलैंड में रहेगा. बिल्कुल कोई टेंशन नहीं.
0: अरे क्या बात है, ऐसा नहीं बोलना, जब तक तू रेडियो पे रहेगा तब तक ऐसा बोलना.
3: भाई मैं पार्टी नहीं बदल सकता.
0: अच्छा ओके
1: ठीक है.
0: ओके ठीक है.
1: थैंक यू एफआज.
0: हेलो
4: हेलो जी, मुबारक हो भाई दोनों को.
0: थैंक यू सो मच यार.
1: थैंक यू सो मच.
4: हाँ भाई मैं सही बताऊँ ना भाई, सैंडी रुज़बे, मैंने है ना लाइफ में कभी रेडियो ही नहीं सुना.
1: वाओ
0: अच्छा.
4: और सब सुना है तो सिर्फ आपको ही सुना है, यहीं पर ही सुना है बस.
0: अच्छा तो आप बोल आप, हाँ मेरे को समझ में आया, तो इसलिए आपने कोई सुना नहीं तो आपको हम बेस्ट लग रहे हैं.
4: नहीं नहीं मतलब मैं रेडियो कभी जैसे वो एंट्री होती थी ना वो तार वाली.
1: हाँ.
4: मतलब पहले
1: yeah.
4: तो कभी कभार मैंने कभी कभार बहुत ही रेयरली कभी मैंने वो यूज करी होगी रेडियो के लिए. मतलब रेगुलर तो मैं आपको आपका ही सुनता हूँ जो भी प्रोग्राम आता है.
0: हाँ हाँ.
4: पर मुझे आपकी जो बातचीत करते हो लोगों से और आप गेम खेलते हो जो तरह तरह की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मुझे तो सही बताऊँ तो मुझे ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती है गाने सुनने से. अच्छा
0: अरे क्या बात है. थैंक यू
1: यार. थैंक यू सो मच बिकॉज आई थिंक हमें वो ज्यादा मैटर करता है कि किसी को बातें बकवास तो नहीं लगती है यू नो लाइक. So, yeah,
4: मैं तो ये कहता हूँ
0: नहीं बकवास लगती है लेकिन मजा आता है बकवास सुनने में. ऐसा ये कह रहे हैं.
4: ऐसा है ना देखो पूरा दिन से आदमी भरा बैठा होता है अंदर. वो किसी के साथ शेयर कर लेता है, मतलब हर किसी के सामने नहीं बोल पाता ना आदमी. जैसे मैं आपसे बात करूंगा ना, मैंने आपको देखा ना आपने मेरे को देखा, तो मैं आपकी अपनी दिल की बात आपसे कर सकता हूँ, आपसे बोल सकता हूँ जो भी अंदर में है.
1: या वो एक कम्फर्ट हो जाता है, ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है.
4: हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो वही बात होती है थोड़ी सी. तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में गाने से चलाए मत करो.
0: अच्छा चलो ठीक है क्योंकि वैसे भी हम पॉडकास्ट में ही तो जीत रहे हैं ना वैसे भी, तो पॉडकास्ट ही करते हैं
1: बातें करने में ही जीत रहे हैं.
4: गाने तो क्योंकि गाने तो भाई पूरा दिन सुनते हैं हम.
0: अच्छा चलो ठीक है. थैंक यू भाई. थैंक यू आपके प्यारे वर्ड्स के लिए.
1: थैंक यू शिवराज.
0: थैंक यू मैन. काफी लंबे लंबे और बढ़िया बढ़िया मैसेजेस आए हैं, वो भी पढ़ेंगे हम. लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेरे को
1: गाना बजाना पड़ेगा.
0: गाना काटना पड़ेगा. बट थैंक यू विनय फॉर थैंक्स फॉर योर मैसेज. एंड थैंक यू, एक और का मैसेज आया है लाफिंग आउट लाउड. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज. या

0: आज है फ्राइडे, फ्राइडे हम कह सकते हैं आज, क्योंकि आज हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 5th ऑफ जून. हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द ड्राइव शो.
1: गुड आफ्टरनून. काफी मैसेजेस हमने मिस आउट किए हैं, बहुत ब्यूटीफुल कई मैसेजेस आए हैं रुजवे, जैसे कि बिनेफर का, शी हैज सेड मुबारक टू अपरा वाला.
0: पढ़ो पूरा मैसेज, पढ़ो.
1: सैंडी गोयल एंड रुजबे बाबा.
0: सैंडी गर्ल बोलनी चाहती थी वो.
1: ओके, गोयल लिखा है इन्होंने.
0: गोयल थोड़ी हो आप,
1: नहीं
0: सीखो आप.
1: हाँ Confabulations to Apra Wala.
0: Confabulations
1: लिखे इन्होंने.
0: ये मुझे लग रहा है congratulations और fabulations
1: का mix किए कुछ.
0: I don't know
1: inspired
0: what
1: somewhere to Apra Wala darling.
0: आपको पता ना, रानी directly contact में इनके, वो इंग्लिश डायरेक्ट बिनेफर के साथ डिस्कस करती है और वर्ड्स ऐड करती है डिक्शनरी में.
1: ऐसा क्या?
0: हाँ, जब थी रानी तभी.
1: ओके, कीप द एंटरटेनमेंट फायर बर्निंग विद इन यू एज वेल डिजर्व्ड अवार्ड एंड आल्सो रोर विद मीडिया दैट श्योरली वर्क्स फॉर यू एंड ऑल ऑफ अस एज लिसनर्स. स्टे ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ अपरी दुआ. जुग जुग जियो ने प्रॉस्पर करता रह जो. विजय सो जय हो. बिनेफर एंड पोरस एंड एक्सटेंडेड फैमिली एंड ऑल्सो फ्रॉम एंटायर ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी. तरफ थी. ओके, ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर प्रविश.
0: वेरी नाइस, थैंक यू सो मच यार, लवली.
1: थैंक यू सो मच बिनेफर.
0: और एक मैसेज भेजा उन्होंने, वो भी पढ़ लो ना फिर अभी.
1: यू हैव मेड अस ज़ोरास्ट्रियंस एंड आल्सो एज़ ज़ोरास्ट्रियंस एंड आल्सो एज़ इंडियंस प्राउड. बॉस पाटे बनते हैं और आज तो फ्राइडे है.
0: अरे क्या बात है.
1: Yeah, thank you so much guys, thank you आपके messages के लिए. And इस सावर में और भी बात करेंगे. एक AI है, AI company है, जिन्होंने एक model वो बना रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने pause लगा दिया है, slow down कर दिया है, because उनको लगता है कि अगर वो उसको और develop करेंगे तो
0: वो take over कर लेगा world को,
1: कुछ गड़बड़ हो सकती है.
0: अच्छा,
1: या तो इसके बारे में भी बात करेंगे.
0: और भी कुछ बात करेंगे यार सैंडी, कुछ और भी बात करो यार.
1: हाँ तो करो,
0: जहाँ पे हमें कुछ कोई बात करे. आज वैसे 5 बजे के बाद हम ये खेलने वाले हैं, जो एक हमने पिछले हफ्ते इसका एक वर्जन निकाला खेला था.
1: yes.
0: जो हम कोशिश करेंगे इस बार फिर आपके साथ खेले.
1: कनेक्ट द डॉट्स.
0: हम आपको एक किसी का भी नाम देंगे, कुछ भी देंगे, आपको उसको कनेक्ट करना है आपकी तरफ. हाउ डू यू कनेक्ट देम टू यू?
1: अपने अपना रिलेशन उसके साथ आपको निकालना है.
0: हाँ, हाँ.
1: किसी ना किसी वे से कनेक्ट करके.
0: या, या. और ऐसे टाइप के लोग हमारी जिंदगी में हमेशा होते हैं जो बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अरे मैं तो इसका करके ऐसा. वो लोग बहुत
1: तो
0: भारी.
1: आज उन लोगों को यूज करने का वक्त आ चुका है.
0: हाँ.
1: So, ये गेम भी आपके साथ हम खेलने वाले हैं. कुछ और टॉपिक्स भी रहेंगे यहाँ पे आपके लिए. Stay tuned.
0: ये देखो, congratulations and fabulous people together makes my dictionary word confabulations. देखा, मैं बोल रहा हूँ आपका डायरेक्ट सेटिंग है इनका. सीधा अभी मेरे को लग रहा है किंग के बाद बिनेफर ही है नेक्स्ट.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this.
3: Na de dil par de teenu tenne tadaro.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह हम लेकर आते हैं.
1: Yes, आपको बताते हैं कि आपके आसपास और क्या क्या हो रहा है. AI कंपनी है रुजबे. यू नो, हम एक तो चैट जीपीटी काफी लोगों को पता है, जेमिनी पता है, क्लॉड के बारे में पता है. सो जो क्लॉड के मेकर है एंथ्रोपिक.
0: हाँ, एंथ्रोपिक, ये आपने सुना था पॉडकास्ट में, वो एंथ्रोपिक बोल रहे थे.
1: सो AI कंपनी है एंथ्रोपिक. दे आर गोइंग कि वर्ल्ड की लीडिंग AI लैब्स शुड क्रिएट अ कोऑर्डिनेटेड वे टू स्लो डाउन और पॉज द डेवलपमेंट ऑफ AI सिस्टम. सो दैट ह्यूमंस जो है उसको सेफली मैनेज कर सके. अदरवाइज ह्यूमंस के लिए वो थ्रेट हो जाएगा. अदरवाइज ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ह्यूमंस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.
0: अच्छा.
1: सो दे आर वरीड अबाउट रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट. सो AI सिस्टम्स बिकमिंग कैपेबल ऑफ बिल्डिंग और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग देयर ओन सक्सेसर्स.
0: वाओ.
1: या सेल्फ इम्प्रूवमेंट है.
0: ये काफी बार ये हमने ऐसे कोई साईफाई मूवीज में भी देखा भी है ना कि AI फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. लाइक AI नहीं था उस टाइम पे, लेकिन कुछ और जैसे कंप्यूटर खुद का दिमाग लगाने लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है. और फिर वो कौन सी वो मूवी थी यार, अरे अपने अक्षय कुमार की मूवी थी वो रोबोट 2.0 शायद से, अक्षय कुमार एंड ओ नो
1: रजनीकांत.
0: रजनीकांत का मॉन सैंडी यार. Oh my God, big pop this was.
1: So ये जो कंपनी है इनका कहना है कि if AI reaches that stage, humans could struggle to monitor, control or align these systems with human values. तो इसलिए इनका कहना है कि जितनी भी कंपनीज है उनको कोऑर्डिनेशन के साथ स्लो डाउन करना चाहिए और थोड़ी टेंपरेरी बेस पे पॉज करना चाहिए डेवलपमेंट्स ऑफ AI सिस्टम.
0: अच्छा, मेरे को ना इससे एक टॉपिक मेरे मन में आ रहा है सैंडी, जो ना ऑफ लेट मेरे मन में काफी चल रहा भी है ये. सो दिस इज अबाउट कोलैबोरेशन.
1: ओके.
0: डू यू थिंक पीपल इन द सेम इंडस्ट्री कोलैबोरेट एज वेल एज दे शुड? दिस इज अ सवाल फॉर anyone listening out there actually. Do you think people, आप जो इंडस्ट्री में काम करते हो ठीक है, उस इंडस्ट्री में जो दूसरे लोग भी जो काम करते हैं, आर दे गुड एट कोलैबोरेटिंग? मैंने ये देखा है कि आईटी सेक्टर में काफ़ी कोलैबोरेशन होते हैं क्योंकि काफ़ी लोग वर्कशॉप्स लेते हैं साथ में.
1: Yeah.
0: साथ में अपस्किल करते हैं अपने आप को.
1: Yeah.
0: साथ में सारी चीज़ें काफ़ी बार होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. लेकिन यही मैंने आर्टिस्ट्री वाले सेक्टर में इतना कोलैबोरेशन देखा नहीं है काफी बार. कुछ कुछ जगहों पे देखा है, बट कुछ कुछ जगहों पे मैंने कहीं कहीं वो मिसिंग भी मुझे फील होता है.
1: ओके. सो यू मीन कि जो इंडस्ट्रीज है उनको कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए या नहीं? इसमें मीडिया भी आता है.
0: क्या आपके इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में काम करती है कि नहीं? इंडस्ट्री में बोल रहा हूँ.
1: ओके.
0: डू दे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर एज वन यूनिट?
1: मुझे तो लगता है कि करना चाहिए.
0: मीडिया में आपको लगता है ये होता है, मतलब लार्जर स्केल में मीडिया मुझे लगता है करता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनी वाइज देखें, दो बड़े कंपनीज काफी कोलैबोरेटिवली काफी चीजें करते हैं कुछ कुछ.
1: फॉर एग्जांपल मैं यहीं का एग्जांपल देती हूँ, मीडियावर्क्स का एग्जांपल लेते हैं. मीडियावर्क्स के अंदर 10 रेडियो स्टेशंस हैं. काफी कैंपेन्स ऐसी होती है जो कि कोलैबोरेशंस में होती है.
0: नहीं सिर्फ मीडियावर्क्स नहीं, NZME जो है साथ में दूसरी, क्या वो दोनों साथ में, क्या वो साथ में कोलैबोरेट करके करते क्या चीजें? करते कुछ कुछ चीजें,
1: मे बी कुछ कुछ चीजें, लेकिन ऑलवेज लाइक पेपर में तो वो कंपटीशन में रहती है ना.
0: कंपटीशन में रहेंगे लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स वो सेट करते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बोलते हैं जिसको.
1: मेरे को लगता है काफी चीजें होती है कोलैबोरेशन में, काफी इवेंट्स हो गए, काफी चीजें. मेरे को लगता है
0: कुछ गोज नो गोज होते हैं ना.
1: Yes.
0: जैसे कि हर किसी के उसूल कुछ होते हैं.
1: Yeah.
0: बट ये जब अलग अपने इंडस्ट्री पकड़ते हैं क्या उसमें भी ये होता है जहाँ पे देर इज लाइक अ कलेक्टिव टुगेदर?
1: फॉर एग्जाम्पल फूड इंडस्ट्री.
0: हाँ, फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी हो सकता है वो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो सकता है वो. लाइक एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लो स्मॉल स्केल. जैसे कि इंडिया का जो स्टैंड अप कॉमेडी सीन है वो बहुत यूनाइटेड है. एटलीस्ट फ्रॉम द फ्रंट वी कैन सी इट्स वेरी यूनाइटेड. पीपल आर बैकिंग ईच अदर, एक दूसरे के शोज पे जाते करते हैं. बट यहाँ पे वो दिखता है क्या?
1: लेकिन इंडिया का पॉडकास्ट इंडस्ट्री जो है यूनाइटेड नहीं है.
0: काफी लेवल्स तक है यूनाइटेड वो भी.
1: क्योंकि मैंने दो तीन को एक दूसरे के ऊपर ऐसा बोलते हुए देखा है जो बड़े बड़े हैं,
0: जो बड़े बड़े एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कुछ है जो एक दूसरे के इस पे जाते भी है.
1: ओके.
0: सो या सो दैट्स द क्वेश्चन. 0800-004-866 आपकी इंडस्ट्री में आपने क्या नोट किया है? डू यू सी कोलैबोरेशन और डू यू सी के नहीं नहीं हम सब?
1: और आपको क्या लगता है किन चीजों के ऊपर कोलैबोरेशन होने चाहिए? ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपको लगता है कि यार इनके बीच में कोलैबोरेशन होना तो मज़ा आ जाए, वो भी आप शेयर करके बता सकते हैं।
0: एक्चुअली कस्टमर को कभी मजा नहीं आएगा अगर इंडस्ट्री सब कोलैबोरेट कर लिया तो,
1: इफ इट्स नॉट एंटरटेनमेंट।
0: नहीं, कोई भी पकड़ लो, क्योंकि जब जैसे यूनियन हो जाता है ना, यूनियन हो जाता है तो सबसे घाटा उसमें एंड यूजर को ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पूरे इंडस्ट्री ने साथ में आ गए, डेयरी इंडस्ट्री ने, और बोला कि अभी हम मिलकर दूध को $10 में ही बेचेंगे,
1: हाँ तो वो तो फिर कंपटीशन नहीं रहा ना,
0: तो फिर वो उसमें कस्टमर का नुकसान हो जाता है ना काफी बार।
1: लेकिन एंटरटेनमेंट में फॉर एग्जांपल इफ अमेज़न नेटफ्लिक्स डिसाइड करते हैं कि दोनों का स्ट्रीमिंग एक ही है,
0: ओ हो हो हो,
1: तो फायदा हमारा है ना।
0: वाओ, ओके, लेसर सब्सक्रिप्शंस।

Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. Ya

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Chunari Chunari. Let's go likha hai bas aur usme recreation aisa humko अज्यूम करना है कि रिक्रिएशन हुआ है. रिक्रिएशन क्या है इसमें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. कुछ नया बना है इसमें?
1: मुझे लगता है कि जस्ट बीट्स थोड़ी ऐड कर दी है.
0: बीट्स थोड़ी और ज्यादा.
1: इट्स लाइक अ रिमिक्स ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग.
0: ओरिजिनल चुनरी
1: फील्स लाइक. या
0: फील्स लाइक ना.
1: या दैट्स ओरिजिनल. एनीवे, सो हमने आज का आपसे सवाल पूछा था कि आप किस में कोलैबोरेशन चाहते हैं. काफी लोगों ने यहां पे ये
0: भी पीपल डोंट वांट टू कोलैबोरेट.
1: या या कोलैबोरेशन किसी को पसंद नहीं है. लेकिन मूवीज को लेके भी काफी लोगों को कोलैबोरेशन पसंद आती है.
0: जी,
1: मूवी को लेके हमें लगता है कि जब हम देखते हैं कि अरे इसकी मूवी में ये भी है, तो वहां पे हम खुश होते हैं.
0: जैसे फॉर एग्जांपल वो कौन सा यूनिवर्स है, रोहित शेट्टी यूनिवर्स जो है, वो यूनिवर्स में जब सलमान खान की एंट्री हुई.
1: अरे पठान मूवी में जब सलमान खान की एंट्री हुई,
0: दैट वाज
1: नाइस. सलमान खान की मूवी वो कौन सी थी, टाइगर वाली जो लेटेस्ट थी, उसमें जब उसकी एंट्री होती है शाहरुख खान की, दैट वाज नाइस. सो मतलब आई थिंक वो चीजें, वो कोलैबोरेशन हमें अच्छे लगते हैं.
0: जी, एक कॉल भी आ रहा है हमारे पास यहाँ पे. हाय, आपका स्वागत है.
2: हेलो.
0: जी बोलिए, कैसे हो आप?
2: बढ़िया, आप कैसे हो?
1: वही ना, देखो ना अभी
0: सेक्सी आवाज वाले,
1: बाहर परविंदर इतनी हवा चल रही है, तो इसको ना सीट बेल्ट के साथ आज यहाँ पे बांध के रखा है.
0: अच्छा, नहीं तो उड़ जाऊंगा
2: मैं. मुझे आज पता लगा कि आप सैंडी गोयल हो.
1: नहीं, गोयल नहीं हूँ मैं.
0: वो टाइपो था, सैंडी गर्ल था वो.
1: वो गर्ल लिख दिया था किसी ने, से गोयल लिख दिया.
0: टाइपो.
2: अच्छा, मैं तो ऐसे हुई थी रुजवे कि सैंडी गोयल, यू नो गोयल, गोयल आर वन ऑफ द रिच पीपल फ्रॉम इंडिया.
0: तो आपको क्या लगता है सैंडी रिच नहीं है?
2: अग्रवाल.
1: तो आपने सेखों को क्या समझ रखा है?
2: सेखों तो पंजाबी होते हैं ना.
0: तो पंजाबी भी रिच होते हैं यार.
1: क्या बात कर रही हो यार, हम दिल से रिच है.
2: नहीं, पंजाबी रिच तो होते हैं, पर ये जो नाम है ना, ये वाले गोयल, बंसल, पानियल, ये लोग खानदानी रिच होते हैं.
1: अच्छा,
0: खानदानी
2: मतलब उनके जहाँ हाथ डालो वहीं पैसा होता है.
0: अच्छा, अभी उनको ऑफेंड हो जाएंगे, कॉल करेंगे यहाँ पे. अरे यहाँ पे तो थोड़ी होंगे ना,
2: वैसे
1: खुश होंगे ना, उनको तो रिच बोला है.
0: रिच बोला है, खानदानी रिच बोला है.
1: यस,
0: नाइस. परविंदर आप क्या हो फिर? ऐसे
2: मैं सिख हूँ. बुलर.
0: सिख? ओके.
1: बुलर.
0: बुलर
2: वो ना कहावत है, पुरानी कहावत नहीं है, मतलब कहावत नहीं कहते, सिर्फ स्टोरी कहते हैं कि पानी इतने रिच होते हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम कहते हैं ना, लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी आती है. तो वो कोई और कल्चर का बंदा होता है, वो दिवाली के दिन ऐसे ताला लम मार के दरवाजे खुले रखते हैं कि कुछ तो करता है ना, तो लक्ष्मी आती है और घूम फिर के चली जाती है. पर जब वाणी के घर आती है, तो वाणी को पता लगता है लक्ष्मी आई है, जैसे ही वो अंदर आती है दरवाजा बंद कर देता है, तो लक्ष्मी बाहर नहीं जा पाती. इसलिए वाणी हम बहुत.
1: ये कहावत मैंने भी सुनी हुई है.
0: ये अच्छा हुआ ये पुराने जमाने में होता था. अभी के जमाने में होगा तो हैरेसमेंट का केस आ जाएगा उस पर. लक्ष्मी को बंद क्यों किया?
2: जब मैं बोल रही थी ना, मैं तभी सोच रही थी कितना गलत साउंड कर रहा
0: है. अच्छा
2: अच्छा, हम कोलैब की बात कर रहे थे ना.
0: अरे कर रहे थे क्या हम? मुझे लगा हम खानियों में ही खो गए.
1: बताइए.
2: जो लॉजिकल कोलैब होते हैं ना, वो तो अच्छे लगते हैं. पर आजकल जैसे इतने बेतुके इलॉजिकल से कोलैब, जैसे इन्फ्लुएंसर्स को मूवीज में डाल रहे हैं, कोई अच्छा रोल भी नहीं होता, और इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी इज्जत डाउन कर रहे हैं, सड़े सड़े रोल कर रहे हैं सिर्फ मूवीज में आने के लिए. जैसे वो कौन था बंदा जो ललन टॉप चैनल है, कितना बेकार खुला है.
0: सौरभ द्विवेदी.
1: सौरभ भी आया.
2: और वो एक और लड़की है, वो आजकल बहुत आ रही है मूवीज में, उसकी रिसेंट कली आई माधुरी दीक्षित के साथ, उसकी छोटी बेटी बनी है.
1: माँ बहन में
2: छोटी बेटी है वो. इतनी मतलब अच्छी इन्फ्लुएंसर है, उसकी वीडियो कॉन्टेंट इतना चलता है. तो उसकी मैंने दो मूवीज देखी, दोनों ही बेकार. एक तो उसके साथ थी अरण्या पांडे के साथ में.
1: तुम उसकी बात कर रही हो, धरना दुर्गा.
0: ओ, ये वो है, वो हॉस्टल. हाँ, वो गर्ल्स वाला जो चैनल. हाँ, करती. हाँ, है. अच्छा.
2: हाँ,
0: राइट.
2: मैंने
0: राइट.
2: उसका एक वीडियो देखा था कि दमाजी तो ऐसे
1: गली अप्पा में आती है ना ये.
2: आपने उसका दमाजी वाला वीडियो नहीं देखा होगा, बहुत फनी है.
0: बहुत फनी.
2: क्या दमाजी के लिए पानी लेके आ, क्या दमाजी के लिए पक्का चला, नहीं हमारे दमाजी तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारे दमाजी तो देवता है. देवता
0: अरे क्या बात है, आप क्यों नहीं शुरू करते हो इन्फ्लुएंसिंग?
2: मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत साल पहले बोला था कि तुझ में इतना टैलेंट है तो बनाती क्यों नहीं वीडियो।
0: हाँ।
2: तो मैंने बोला कि मैं बनाती हूँ, एक एक दो महीना बहुत कंसिस्टेंट रुकती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि कंटेंट बनाने के लिए भी वो भी एक काम है, उसके लिए भी वो कहते ना वो चाहिए, डेडिकेशन चाहिए,
1: मेहनत है वो।
2: नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं एक दो महीना करती हूँ फिर उसके बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है।
0: सही है, सही
2: फिर
0: है।
2: फिर 6 महीने में गायब रहती हूँ, फिर एक दो महीने में दोबारा एक्टिव होती हूँ।
0: अभी 6 महीने, अभी 6 महीने हो गए ना, अभी आपका 1-2 महीने वाला पीरियड चल रहा है ऐसा लग रहा है।
2: अभी 3 हफ्ते बाद आएगा मेरा एक्टिव।
0: अच्छा,
2: अभी मेरा डोरमेंट पीरियड चल रहा है।
0: अच्छा,
2: और कोलैब की अगर आप बात करो, हमारा वर्क प्लेस कोलैब करता है बहुत चीजों के साथ, जैसे कभी
0: हाँ,
2: तो
0: आप लोग वो पेमेंट बढ़ाने के लिए वो भी होता है ना, स्ट्राइक भी साथ में ही करते हो ना?
2: उसकी बात नहीं कर रही हूँ।
0: अच्छा, वो नहीं,
2: तो हमारा पे कटता है।
0: हाँ,
2: यूनियन वालों का।
0: ओ हाँ, राइट राइट।
2: ये तो बहुत खराब कुलाय है, सैलरी कटती है। जैसे हमारे स्कूल में वो आते हैं वीआर सेट वाले आते हैं, क्योंकि हम साइंसेस के हैं तो वो अंडर वाटर लेके जाते हैं वीआर सेट में, कैसे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है
1: okay.
2: कुछ एरिया में, हाउ कीना हेल्थ इज अफेक्टेड, वीआर सेट के थ्रू दिखाते हैं वो।
0: ओह वाओ, क्रेजी है तो।
2: और हम जैसे हॉस्पिटल्स के साथ भी थोड़ा कोलैब करते हैं, बच्चों के लेके जाते हैं, दिखाते हैं चीजें।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच परविंदर जी, थैंक यू आपकी बात यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कंटेंट क्रिएट करो तो हमको जरूर टैग करना, ठीक है? चली गई वो।
2: हेलो,
0: मैं बोल रहा हूँ आप कंटेंट जब क्रिएट करो ना, जब कंटेंट क्रिएट करो तो हमको जरूर टैग करना उसमें, ठीक है?
2: Okay.
0: तो हमें पता चल जाएगा कि आपका फोन अभी नहीं उठाना है। नहीं ब्रो, अभी हमको नहीं नहीं हमको पता चल जाएगा कि अभी फोन नहीं उठाना है परविंदर का, अभी उसका क्रिएटिंग वाला स्टेज चल रहा है।
2: तो आप लोग क्लैब नहीं करोगे मेरे साथ, फोन नहीं उठाओगे?
1: नहीं नहीं उठाएंगे, उठाएंगे, डोंट वरी परविंदर,
0: उठाएंगे यार, उठाएंगे। आप बुरा क्यों लग के ले रहे हो ऐसा? बस क्लैब एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिक्वेस्ट।
2: मैं दिल पे ले जाती हूँ बात।
0: हाँ, नहीं नहीं ऐसे मत करना यार, बस क्या।
2: चलो, हैव अ गुड डे।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू परविंदर, बाय
0: बाय।

0: चुकती मेरी चुकती मेरी चुकती मेरी
1: Tinsel Town. You're listening to Hapling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए Tinsel Town में Bollywood की खबरें हम यहाँ पे लेकर आते हैं. वैसे सैंडी, बॉबी देओल की मूवी आ रही है बंदर.
2: या
1: ईशा देओल ने बोला है कि उनकी ये मूवी देखने के बाद के फाइनेस्ट एक्टर टुडे.
2: Wow.
1: Bobby Deol.
2: He is
1: actually a very fine actor.
2: Yeah, very fine actor.
1: Actually, काफी अगर देखा जाए ना, Bobby Deol ने उनके जब भी स्टार्ट हुआ उनका बहुत सॉलिड डेब्यू बरसात शायद
2: बरसात
1: बरसात सॉलिड. फिर उसके बाद बिच्छू में भी काफी लोगों ने बहुत पसंद किया.
2: काफी मूवीज अच्छी गई थी बट बीच में देन डिप हो गया.
1: हाँ, फिर उसके बाद अचानक से एकदम ही ऐसा डाउन हो गया था ना.
2: देन ही गॉट डिसअपीयर्ड.
1: या एंड देन ही रिटर्न्ड विद एनिमल
2: Race 3,
1: that's right. Race 3 के बाद फिर एनिमल में लोगों ने बहुत पसंद किया. आश्रम में एक्चुअली आश्रम में भी फिर रिटर्न हुआ ना बाद में.
2: Race 3 में ये हुआ था, मैंने वो इंटरव्यू में देखा था कि he met सलमान खान कहीं पे. He said कि देख मूवी आ रही है एक, बॉडी बनाएगा. तो बोला भाई कुछ भी करूंगा मैं किसी भी प्रोजेक्ट में आने के लिए. आई विल डू एनीथिंग. ठीक है बॉडी बना तो कहता है लेकिन तुम काहे को ही मेरे को कास्ट करोगे ना. ही सेड जब मुझे जरूरत थी मैं तेरे भाई के कंधों पे चढ़ गया था सनी देओल के. आई थिंक इट वाज जीत मूवी शायद. एंड अब तू मेरे कंधे पे चढ़, लेट्स सी.
1: दैट्स सो कूल ना.
2: या दैट्स सो कूल. इसलिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में काम करती है.
1: लेकिन यार भाई का पावर मेरे को पता चल गया है. मतलब
2: I know man.
1: मतलब हम लोगों ने एक रील डाली जिसमें हमारे जो जिसके साथ हमने पॉडकास्ट किया
2: शंकी सिंह
1: वो WWE में, उन्होंने भारत मूवी में भी काम किया है सलमान खान के साथ. और उन्होंने एक सलमान खान के साथ वाला किस्सा ऑन एयर हमारे साथ शेयर किया वहाँ पे. जिसका एक छोटा सा रील हमने काट के इंस्टाग्राम पे डाला और वो रील जो फटा भाई.
2: आपको गाइस बता दे सो फार उस रील के लाइक्स क्या है. मतलब इतने
1: और वो रील में इतना कुछ है भी नहीं ऑनेस्टली देखे तो.
2: मैं सुनाती हूँ यहाँ.
1: अच्छा है रील.
2: मैं सुनाती हूँ अगर आपको देखनी है.
1: नहीं नहीं सुनाओ मत यार, एक व्यू मत कम करो हमारा, एक लाइक भी कम हो जाएगा. नहीं सुनाओ मत, आप बस बताओ कि
2: उसके लाइक्स 87.5K लाइक्स आ गए.
1: 87.5K लाइक्स मतलब मेरे
2: ये लाइफ में पहली बार हुआ है. तो शंकी सिंह के साथ हमने पॉडकास्ट एक्चुअली में रिकॉर्ड किया था जिसकी ये रील है. अगर आपको चेक करनी है अनफिल्टर्ड PD पे जाइएगा इंस्टा पे, वहाँ पे ये रील आपको मिलेगी.
1: लेकिन आप रील से खुश मत रहिए, आप पूरा पॉडकास्ट जाके चेकआउट कीजिए क्योंकि हमने बहुत मेहनत से
2: बायो में लिंक डाला मैंने.
1: थैंक्स टू केतन कुमावत.
2: यस, उन्होंने बड़ा अच्छा एडिटिंग किया है, बहुत अच्छी एडिटिंग की.
1: सो आप जाके पूरा एपिसोड चेकआउट कीजिए. स्पॉटिफाई पे वीडियो मिलेगा आपको पूरा, या फिर आपको यूट्यूब पे भी इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा. एंड सैंडी, और भी कोई न्यूज थी आपके पास?
2: है जवानी तो दीवानी.
1: है जीवन है जवानी तो इश्क होना है.
2: हाँ सॉरी, जवानी तो इश्क होना है. सॉरी,
1: जवानी तो तू दीवानी.
2: दो मूवीज को एक साथ कर दिया. हाँ. इसके रिव्यू आए हैं.
1: रिव्यू भी आ गए. एक बार अब बिफोर यू से एनीथिंग, व्हाट नहीं आपको तो पता है मेरा गट फील है कि फ्लॉप है. आपका क्या रिव्यू में क्या क्या है?
2: 3.5 out of 5.
1: अच्छा, not bad then.
2: Not bad. So critic reviews है by the way. इनका कहना है कि entertainer. That makes audience smile.
1: कौन है वो critic?
2: So this is Bollywood Hangama.
1: अच्छा.
2: So Bollywood Hangama का ये review
1: अच्छा,
2: है.
1: अच्छा ठीक है.
2: So ये movie में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े. मुझे लगता है कि अगर आप ना जाके ऐसा time pass movie देखना चाहते हैं जहाँ पे आपको हंसी भी आए, डेविड धवन type of movie अगर आप enjoy करना चाहते हैं, go and watch.
1: तो ये release हो गई क्या movie?
2: Yes, release हो गई है ना ये movie.
1: है जवानी तो इश्क होना है release भी हो गई.
2: Yes.
1: तो ये कब रिलीज हो रही है यार अपना मैं वापस आऊंगा?
2: वो मेरे को लगता है नेक्स्ट में हो रही है.
1: अच्छा.
2: या
1: ओके.
2: वो आई थिंक 12th जून को रिलीज हो रही है.
1: अच्छा नेक्स्ट वीक को रिलीज हो रही
2: है. नेक्स्ट
1: वीक. ओके ठीक है. तो चलो फिर, अभी है जवानी तो इश्क होना है, इस मूवी को आप जाके फटाफट देख लीजिए और फिर उसके बाद अगले हफ्ते मैं वापस आऊंगा. मैं वापस आऊंगा तो मेरे को देखनी है
2: ये. तो 100% मैं जा रही हूँ.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल काफी बवाल. आज थंडरस्टॉर्म्स की संभावना है. नॉर्दर्लीज गस्टिंग 90 किलोमीटर पर आवर. लोकलाइज डाउनपोर्स भी पॉसिबल है. सिवियर थंडरस्टॉर्म वॉच भी कहा गया है रहने वाला है. कल सुबह बारिश होने वाली है. आफ्टरनून जाते थोड़े बहुत शायद क्लियर होगा, लेकिन इट्स गोना बी रेनी टुमारो.
2: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: Good evening. 5:02. You are listening to The Drive Show with Sandy and Rizbe. Hi, Sandy.
4: Good evening, guys.
1: Good evening.
4: Very, very good evening
1: Shall
4: to you.
1: Shall we say you're listening to the 3 times award winner, 3 times champion.
4: 3 times champion. अगर आपने miss out किया है, कल New Zealand Radio and Podcast Awards हुए थे. So कल हमने एक बार फिर से award जीता है Best Asian Podcast के लिए.
1: आपने आज तक इससे पहले कभी कॉल नहीं किया हो यहाँ पे,
4: तो कॉल कीजिए. यहाँ
1: आज कॉल कीजिए आप यहाँ पे.
4: और वैसे भी आज थोड़ी देर में हम गेम भी खेलने वाले हैं ना.
1: एक गेम खेलने वाले आज हम.
4: कनेक्ट द डॉट्स.
1: कनेक्ट द डॉट्स.

0: वैसे
1: मेरा रेंट
0: रेंट या फिर कुछ ऐसा बोलना चाहोगे तुम जो एड्रेस करना है या रेंट ही बेसिकली रेंट ही हो गया ना वेंट आउट करना है या कुछ भी ऐसा
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं
0: कुछ भी नहीं है
1: नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है नहीं है सैंडी नहीं है कुछ क्यों यार आप मेरे साथ ऐसे करते हो हमेशा यार
0: अरे मैं पूछ रही हूं तुम्हें आई एम द
1: बैड कॉप आई डोंट वांट टू बी द बैड कॉप नो
0: मैं शुरू करती हूं ना रेंट की बात करते हैं तो आप भी शुरू कीजिए अगर हफ्ते में कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि ऐसा आपको बोलना है आउट ऑफ सिस्टम निकालना है 800-00 हम बिकॉज इसके बाद वीकेंड एंजॉय कीजिए निकल जाएगा उसको साथ में लेके मत जाओ
1: गेट इट आउट ऑफ द सिस्टम गिव अस अ कॉल ओवर हियर और आपको नाम बताने की जरूरत नहीं हम पूछेंगे भी नहीं आपको नाम
0: yeah.
1: आप बस यहाँ पे कॉल कीजिए एंड बी अ फर्स्ट टाइम कॉलर तो आपका यू नो लाइक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल रिकग्नाइज यू योर वॉइस डोंट वरी अबाउट दैट क्योंकि वैसे भी हमारा FM पे जब सुनते हो तो
0: Anyway,
1: हम खुद की आवाज में पहचान पाते
0: ये रेंट नहीं करना है रुस्बे ये हो चुका है
1: अच्छा ओके सॉरी गो ऑन
0: सो एक मैसेज आया है चूजिंग द रॉन्ग करियर पाथ इज माय रेंट
1: यार दिस इज अ टफ वन यार दिस इज अ टफ वन एंड काफी बार ना हमें पता ही नहीं चलता है कि साला व्हाट इज द राइट पाथ और बट यू नो व्हाट द गुड पार्ट इज दैट यू एटलीस्ट नो व्हाट इज द रॉन्ग पाथ एंड
0: यू रिकॉग्नाइज इट
1: इट इज नॉट द ओनली रॉन्ग पाथ दैट यू विल टेक ट्रस्ट मी ऑन दैट ऑल्सो ऐसा काफी बार होता है ना
0: सबके साथ होता है
1: मल्टीपल रॉन्ग पाथ ट्राई करना पड़ता है फिर जाके एक राइट पाथ मिलता है फिर वो राइट पाथ पे भी कुछ साल जाने के बाद लगता है कि नहीं शायद ये भी रॉन्ग ही है होता है ऐसा नॉर्मल है नॉर्मल ही है ना शायद बताओ आपका क्या रेंट था सैंडी
0: मेरा रेंट ये था कुछ पर्सनैलिटीज कुछ लोग कई बार ऐसा होते है कि ऐसा क्यों करते है कि If you got something and तुम बहुत underplay जब उसको करते हो
1: अच्छा
0: underplay करते हो for example हाँ ये तो पता नहीं कैसे हो गया ना नहीं पता ये तो पता नहीं कैसे मिल गया
1: अच्छा
0: नहीं पता मतलब तुम तुम्हें कोई congratulate करता है कुछ ऐसे करता है
1: ये आपका rant मेरे तरफ इशारा क्यों किया जा रहा है मतलब
0: नहीं ये actually मेरे को ये nature से problem है ये nature से problem है अरे पता नहीं कैसे हम तो कुछ भी नहीं है ये तो कोई बात नहीं है मतलब just celebrate what it is
1: and just say thank you
0: exactly
1: okay
0: yeah ताकि कई बार मेरे को लगता है काफी लोग ऐसा भी इसलिए करते हैं ताकि उनको और तारीफ मिले अरे नहीं नहीं तुमने तो इतना अच्छा किया मेरे को ये नेचर से प्रॉब्लम है
1: ओके सैंडी नोटेड
0: या एनीवे
1: अच्छा मस्त है भाई रेंट बोल के मेरा फुल बजाया यहाँ पे
0: तुम्हारा क्यों बजाया मैंने
1: क्योंकि मैं ऐसे रहता हूँ ना कभी बार क्या हाँ नहीं ठीक है ओके
0: अच्छा मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला था जस्ट टू क्लियर
1: अच्छा ठीक है
0: तुम्हारे लिए नहीं था ये
1: सो समवन आउट देयर
0: If you got something, तुमने अचीव किया तुम्हें कोई कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है या फिर तुम किसी ने घर खरीदा है कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है अरे नहीं लेकिन इसके बाद तो ये भी हो जाएगा ना इसके बाद तो मोर्गेज भी हो
1: मतलब
0: जाएगा
1: सेलिब्रेट नहीं करते रोते ज्यादा है
0: रोना ज्यादा लेकिन सेलिब्रेट नहीं करना आई थिंक इट्स हाई टाइम टू चेंज दैट
1: दैट्स राइट सेलिब्रेट योर विन्स हाय आपका स्वागत है
2: हेलो रुस्ते एंड सैंडी जी मैं आपसे बोल रही हूं
1: क्या
2: बहुत अच्छे लग रहे थे कल Congratulations.
0: Thank you so
1: कौन
0: much.
1: बोल रहा है सॉरी मीनाक्षी
2: अर्शदीप
1: अर्शदीप बोल रही है
0: क्या मैंने मीनाक्षी का ही सुना
1: क्या मालूम सैंडी किधर है
2: अल्लाह मुझे भूल गए
0: नहीं अर्शदीप अभी कर रही है ना लेडीज नाइट
1: भी कर रही है अर्शदीप आपने बहुत ही ब्यूटीफुल एक एमसी लिए इस बार
0: और क्या अर्शदीप पता नहीं कैसे आपको ये एमसी मिल गई यार
2: अरे अवार्ड विनिंग खूबसूरत इतनी अच्छी आवाज उनकी और इतनी टैलेंटेड और फन वाइब वाली हमने एमसी बहुत ढूंढ ली
0: वही तो बुके कोई में कर रही है लेडीज नाइट
1: हाँ कर दिया प्रमोट आपने
0: मुझे
1: पता चल गया कर रही है सैंडी होस्ट
0: सिर्फ $10 की टिकट है बहुत सस्ती है
1: इसको इनवॉइस भेजना पड़ेगा
2: अभी मत हो लेडीज नाइट आप तो नहीं आ सकते बट
1: मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूं इफ यू आस्क ऑल द लेडीज आउट देयर दैट फॉर अ लेडीज नाइट हुम वुड यू वांट एज एन एमसी दे वुड वांट अ लेडा एज एन एमसी
2: लेकिन
1: पराय मर्द की बातें अच्छी लगती है ना काफी बार
0: Don't give wrong ideas.
1: Okay, sorry.
2: But I like how you're planting yourself there. Next time, we'll ask.
1: नहीं नहीं नहीं. हम सर्वे

0: कैसे कराने हैं। प्लीज मैं तो ये बोल रही थी कि कॉम्प्लीमेंट अगर देना एक कला है तो कॉम्प्लीमेंट लेना भी एक कला है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, किसी को बोले ना वो ऐसे शायद होती कि अच्छा तारीफ मत करो ऐसा ही है ठीक है ठीक है, लेकिन ऐसे कह रहे नहीं नहीं मैंने तो किया ही नहीं ये सब कुछ।
1: हाँ पता नहीं कैसे हो गया ये।
0: हाँ हाँ अरे यार पाजी तानू तो पता है, लेकिन वैसे बोले कि हाँ हमें भी पता नहीं था ये हो गया, बट यू आर राइट कि मान लिया तो मुझे कहीं नजर भी ना लग जाए।
2: ये भी एक होता है, या फिर
1: ये पॉइंट हमारी कम्युनिटी में बहुत है।
2: नहीं नहीं काफी बार ऐसा भी होता है ना कि अगर किसी ने तारीफ कर ली और तुमने सिर्फ थैंक यू बोल दिया तो सामने वाला बोलेगा देखा कितना सर पे चढ़ गया ये, देखा इसकी तरक्की इसके सर पे चढ़ गई है अभी, ये सिर्फ थैंक यू बोला।
1: क्या परसेप्शन है ये?
2: नहीं ऐसा होता है यार काफी बार, मेरे को लगता है इसलिए हम लोग इतने अपोलोजेटिक हो गए फॉर सक्सेसेस आल्सो कि अरे नहीं नहीं नहीं अरे नहीं ये तो बस ऐसे ही हो गया हो गया।
1: तो हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम तो नहीं बोलते।
0: हाँ पर एक ये भी सोचे अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है मुझे अभी देना भी पड़ेगा, पर आपको ये बोलते ना आप बहुत अच्छे लग रहे हैं पर आप देख रहे हो सामने तो वो इतना अच्छे नहीं लग रहे थे, क्या मैं बोलूँ क्या, आपके शूज भी बड़े अच्छे हैं ऐसा कोई बोल देता है
2: मेरे को। ना मेरे को अर्श मेरे को इससे ना एक याद आया, तो मेरे कुछ दोस्त है ना वो बहुत जिम जाते हैं ठीक है, और मैं नहीं जाता हूँ जिम, लेकिन जब भी मेरे को मिलते ना तो बोलते अरे यार बहुत फिट लग रहा है यार बहुत फिट लग रहा है, तो वो मेरे को बाद में थोड़ा टाइम के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेरी इतनी तारीफ इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं रिटर्न में बोलूं कि अरे नहीं नहीं तू बहुत अच्छा लग रहा है यार जिम जा रहा है क्या। तो अगले बार अभी ये जो वैसे कर हाँ तो ये जब ऐसे मुझे को बोलते हैं ना मेरे को पता चल गया ना इनका, तो मैं बोलता हूँ यस ब्रो आई एम लाइक माइंडफुल ईटिंग माइंडफुल स्टेइंग ऐसा करके मैं टॉपिक चेंज ही कर लेता हूँ। नहीं तो ये जिम पे जाएंगे कि अरे मैंने आज इतने का डंबल उठाया, मैंने नहीं जानने का
1: थैंक यू बोल के बस खत्म।
0: नहीं पर एक और भी बात है, अगर जैसे कोई बोलता है कि अरे बहुत फिट लग रहे हो पर आपने आपको पता कि मैं लेकिन बाहर खा रहा हूँ और मैं गया हूँ, तो कि ये एंटी कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है कि मैं फिट नहीं लग रहा तो इसलिए अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड है
1: कॉम्प्लिकेट। ये भी बात है,
2: ये वही मेरे को भी वही लग रहा है, लेकिन मैं आई हूँ पॉजिटिव वाइब्स ओनली तो मैं नेगेटिव एक्सक्लूड ही कर देता हूँ ऑटोमेटिक।
0: तो हमारा थीम है कि गिव कॉम्प्लीमेंट थैंक यू एंड मूव ऑन।
1: Give compliment, thank you and move on. Good one.
0: Give compliment, take compliment, thank you and move on. कि ऐसे मत सोचो, thank you बोलो और आगे बढ़ो।
2: हाँ, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई compliment देते तो आपको return में compliment।
1: हाँ, return gift हमेशा नहीं होता है।
2: ऐसे बच्चों की पार्टी में थोड़ी जा रहे कि return gift मिलेगा।
0: सभी को कुछ उम्मीद होती है कि return मिलेगा कुछ।
2: आपका इवेंट मतलब कब हो रहा है आपका इवेंट?
0: नेक्स्ट वीक सैटरडे 13th ऑफ जून फ्रॉम 5 PM टू 9 PM एट फुकेको इंडियन
2: हॉल।
0: बहुत कूल है
2: ठीक है।
0: थैंक यू फॉर लाइफ हैक्स।
2: फॉलो मी फॉर मोर लाइफ हैक्स। क्या है आपका इंस्टा इंस्टा आईडी क्या है आपका?
1: वो भी बोल ही दो अब।
0: फॉलो
2: आवर
0: पेज ऑन फ्रैंकलिन इंडियन कल्चर क्लब।
2: अरे यार दिस इज सो स्वीट। अर्श नहीं यार अभी तुम्हारा पर्सनल हैंडल भी बताओ हमें।
0: AKTV।
2: क्या क्या?
0: AKTV।
2: AKTV।
1: ओह
2: वेरी नाइस। AKTV
1: गो एंड चेक।
2: या
1: थैंक यू।
2: थैंक्स अर्श थैंक्स सो मच।
0: थैंक यू
2: ओके। तो अभी तो बस शुरू हुआ है पार्टी, अभी और भी धमाल करेंगे आपके साथ। आज हम कनेक्ट द डॉट्स खेलने वाले हैं थोड़ी देर में।

0: accurate traffic.
1: Kitchen Mania trade prices this month.
2: Severe thunderstorm watch for Auckland. Rain, a low of 13 degrees. Quite a few crashes at the moment. There's one on the northern near Wairau Road affecting northbound traffic, and also one at West Haven just heading north onto the Harbour Bridge. On the southern, there's also been a crash affecting northbound traffic just past the Drury off-ramp, and traffic is slow heading north from Ramarama.
1: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and get trade prices. T's and C's apply.
3: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
4: Kyun? Kya hua?
3: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Fir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
5: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424. Save karo Mitre 10 Mega Westgate or Henderson mein with 25% off pink stuff cleaning or Novu wire wardrobes or 50% off selected Sistema. Plus spend $20, enter online and go in the draw to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
6: Each season, our growers bring you only the freshest seasonal produce. Like New Zealand grown The Odd Bunch apples, 2kg, a fresh deal at just $4 each. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
7: Sun Tours ke successful March 2026 Best of India Tour ke baad. Ab bookings open hai for Best of India September 2026 Tour. Delhi ke shopping, Agra ka Taj Mahal, Jaipur Amer Fort aur Elephant Ride, LP mein houseboat ka experience aur Aamche Mumbai ki Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights aur 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800-478686. Limited spaces.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
12: Power Drive at 5.
13: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
14: Power Drive at 5 आप सुन रहे हैं only on Humpling Bollywood's biggest hits 5:23 PM right now and आपके साथ हम अब खेलने वाले हैं ये एक नया गेम है जिसका नाम है
13: Connect the Dots.
14: Connect the Dots में हम आपके लिए अब थोड़ा ऐसा complicated game है मुझे लग रहा है but see I think we all have grown together so complicated game बनता है अपना खेलना तो आज का ये जो game है उसमें ये है कि हम आपको कोई भी एक किसी चीज का नाम लेंगे आपको कहीं ना कहीं से उसके साथ आपका कनेक्शन जोड़ना है
15: या yeah.
14: तो एग्जांपल आपके पास है कोई ऐसा नाम जिसके मतलब आप दे सकते हो
15: पहले आपस में खेलते हैं तो रुजबे तुम्हें मैं एक नाम देती हूँ हाँ. जिसके साथ तुम्हें कनेक्शन जोड़ना है
14: ठीक है
15: लेट्स से एमएस धोनी
14: एमएस धोनी ओइला
15: अब एमएस धोनी के साथ कैसे कनेक्शन जोड़ोगे तुम रैंडम नाम गाइस आप कोई दे सकते हो
14: MS धोनी MS धोनी का बर्थडे होता है 7th जुलाई को
15: ओके
14: मेरी यहाँ पे बहुत अच्छी दोस्त है जिसका बर्थडे होता है 7th जुलाई को सो वो उसकी बर्थडे ट्विन हो गई मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ दिस इज हाउ आई एम कनेक्टेड टू MS धोनी
15: ठीक है वेल प्लेड
14: या
15: या
14: So yeah, any connection you have to
15: any connection you have to make.
14: मैं एक पूछूं क्या आपको?
15: Yeah.
14: Steve Jobs.
15: Steve Jobs.
14: हाँ.
15: Profile बताना एक बार फिर से.
14: अरे यार.
15: I know यार फिर भी connection निकालना होता है ना Apple ये ना हाँ. So कोई और वाला ना निकाल दो. So Steve Jobs के साथ connection निकालना है. Fine. So मेरे पास है सैमसंग
14: हाँ ओके ओके ओके
15: ठीक है एंड सैमसंग में जितने फीचर्स होते हैं बाद में कॉपी होते हैं एप्पल पे।
14: ये बहुत कंट्रोवर्शियल डायलॉग है, पीपल आर गोइंग टू गेट वेरी ऑफेंडेड।
15: आई नो,
14: बट सम पीपल विल बी वेरी हैप्पी आल्सो।
15: या सो उसमें काफी फीचर्स कॉपी होते हैं एप्पल पे।
14: हाँ,
15: एंड एप्पल के सीईओ है स्टीव जॉब्स।
14: है नहीं रहे थे,
15: थे या फॉर्मर सीईओ कह सकते हैं, फॉर्मर सीईओ बीन स्टीव जॉब्स।
14: तो ऐसा कनेक्शन है,
15: तो इस वजह से कनेक्शन है कि आई विल नेवर बाय एप्पल फोन, आई विल नेवर बाय अ फोन जिसके सीईओ स्टीव जॉब्स रहे हैं।
14: क्यों ऐसा, क्यों इतना क्यों ये कर रहे हो यार?
15: मेरे को पसंद नहीं है ना
14: स्टीव जॉब्स। नहीं पसंद कि एप्पल नहीं पसंद?
15: एप्पल नहीं पसंद।
14: अच्छा, एप्पल नहीं पसंद, अच्छा ठीक है, वही। ओके कूल, तो ये ऐसा सिंपल है। तो अभी आप यहाँ पे कॉल कीजिए,
15: कैसे भी घुमा के आपको बनानी है कहानी।
14: अभी आपको या तो आपको हमें नाम देना है या तो हम आपको नाम देंगे, व्हाटएवर, वी आर ओपन विद बोथ। तो 0800-004-866 इज द नंबर, गिव अस अ कॉल एंड प्ले दिस गेम विद अस। आई नो इट्स फ्राइडे के दिन काफी लोग प्रेफर नहीं करते कॉल करना,
15: या लेकिन आप कुछ भी ऐसी गेम बना सकते हैं। But there is another way of doing the connect the dots as well.
14: हाँ बताओ, दूसरा कौन वे बताओ?
15: दूसरा connect the dots अगर आपको गेम खेलनी है, अगर ये आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, तो उसमें ये खेल सकते हैं जैसे हमने पहले शुरू किया था कि हम एक नाम बोलेंगे, रुजबे दूसरा नाम बोलेगा जो उसके साथ कनेक्टेड है, वहाँ से चेन शुरू करनी है।
14: चलो तो वैसे चेन शुरू करनी है,
15: आप चेन को कंटिन्यू करना,
14: ठीक है,
15: यहाँ पे कॉल करके 0800-00 हम पर।
14: बहुत फ्लेक्सिबल है हम लोग, हम आपके अनुसार खेलेंगे जो आपको सही लगे।
15: फ्राइडे है ना, चिल।
14: रोनल ने एक नाम दिया आपको,
15: मुझे दिए क्या?
14: हाँ हाँ,
15: मुझे नहीं दिए,
14: आपको ही दिया है।
15: नेक्स्ट इज योर चांस ना रुजबे।
14: नहीं बहुत इजी है, द रॉक।
15: द रॉक
14: ठीक है, मेरा चांस ठीक है। द रॉक, द रॉक WWE में रेसलर थे।
15: या
14: हमने रिसेंटली पॉडकास्ट किया WWE के एक रेसलर दिलशेर शैंकी के साथ,
15: या
14: और उनके साथ हमने बैठ के बात की, तो दैट इज हाउ आवर वे ऑफ
15: कनेक्टिंग विद द रॉक।
14: द रॉक,
15: he talked about the rock.
14: हाँ, और अभी बाहर मेरे हाथ में एक पत्थर भी था।
15: क्या बात कर रहे हो?
14: The rock. I had a rock. Anyway, you can give us a call. But अभी के लिए हम एक गाना सुनते हैं, जो मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, वो गाना, उस मूवी का गाना ही है।
0: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
10: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: You're listening to the Drive Show. Power Drive at 5 आपके लिए जारी है और बीमारी मुझे लग रहा है हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है क्योंकि अभी मेरे को भी suddenly फिर से वो फील हो रहा है
2: yeah.
1: कि गया मैं फिर से
2: There's something in the air.
1: There's something in the air in the studio.
2: There was something in the party also.
1: क्यों पार्टी में क्या ऐसा हुआ?
2: कल गए थे ना हम awards night में बहुत लोग थे बहुत लोग बीमार थे पता है?
1: क्या बात कर रहे हो?
2: Yeah.
1: वो हम ही थे बहुत लोग बीमार
2: Anyway, so this article actually में Christchurch की mother है Christchurch mother, she is calling for an extension to bereavement leave for grieving families. So Sheena इसका नाम है who tragically lost her daughter in 2023. She said कि New Zealand को एक चीज के ऊपर जो ध्यान देना चाहिए जो बाकी countries से inspiration लेनी चाहिए वो ये है ये करंटली 3 डे की लीव होती है
1: बाकी कंट्री में कितने की होती है
2: आई एम नॉट वेरी श्योर कितने की होती है बट शी सेड दिस कि 3 डेज की करंटली यहाँ पे है न्यूजीलैंड में कई बार अनफ टाइम नहीं होता है कई बार फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करने में भी टाइम लगता है
1: या
2: फैमिलीज विजिटिंग या वो सब चीज़ों में एंड द पर्सन माइट नॉट बी मेंटली वेल टू गेट बैक टू द वर्क इन 3 डेज सो अगर वो उसको 10 डेज कर देते 10 डेज ऑब्वियसली इज नॉट इनफ फॉर द ग्रीविंग एनी वे But 10 days may the person is done with some kind of formalities and to get back to the work.
1: 100%. It's very difficult. But dusra side bhi uska dekhna padega na Sandy ki every additional leave is a cost to the company.
2: It is 100% cost. Lekin yahan pe bahut sari leaves hoti hai Ruzbe. Yahan pe bahut sari companies mein well-being ki leaves hoti hai. You know, bahut sari agar aap mentally feel nahi अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो उसमें भी सिक लीव्स होती है देयर आर मेनी अदर लीव्स एक्चुअली में जो होती है तो इसका ये कहना है कि जहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज होती है लीव्स की तो बरीवमेंट लीव जो कि एक बहुत बड़ी लीव होती है एक बहुत बड़े ट्रॉमा से निकल के आते हैं बिकॉज आई रिमेंबर आई टुक लाइक अ मंथ लीव मैंने अपनी सारी की सारी एनुअल लीव यूज की थी बिकॉज फॉर मी 3 डेज वॉज नॉट इनफ तो इसलिए आई टोटली गेट दिस
1: और अपना जॉब भी अलग हो जाता है बिकॉज़ इट इज कंप्लीटली लाइक यू आर ऑन एयर
2: आई एम ऑन एयर लाइक मेरे लिए लाइक वापस आके आई एम ग्रीविंग और वापस आके मुझे यहाँ पे एंटरटेन करना बोलना हंसना इज नॉट इजी
1: एट ऑल
2: या एक तो होता है कि आपको बैठ के काम करना है बट दिस इज लाइक उसके लिए भी आई एम नॉट सेइंग कि इज इजी बिकॉज कंसंट्रेशन होती है बैठ के काम करने में
1: एग्जैक्टली मतलब हर एक अलग अलग जॉब में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है जो जब आप यू नो ग्रीव कर रहे हो तो वो टाइम पे वो शायद पॉसिबल ना हो बट व्हाट इज योर टेक 0800-004-866 डू यू थिंक 10 डेज बिरीवमेंट लीव इज रिक्वायर्ड
2: एंड यूके में रिसेंटली दे पास्ड अ बिल extending the bereavement leave to 10 days for parents who have lost a child and in France people were entitled to 14 days so parents ke liye bhi unhone kuch different kiya hai like parents ke liye jaise unhone 10 days ka rakha hai UK mein
1: right
2: aur France mein it's 14 days
1: aap bataiye aapka kya take hai iske upar
2: and
1: I would like to hear from business owners as well yaar ke aapka kya point of view hai isko lekar
2: yeah Kyunki of course
1: mainstream नहीं होने के लिए वुड बी फॉर लाइक बिजनेसेस गेटिंग अफेक्टेड ना सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट 0800-004-866 इज द नंबर यू कैन गिव अस अ कॉल ओवर हियर एक गाना सुनते हैं और गाने के बाद अगर आपका मन है तो आप जरूर कॉल कीजिए यहाँ पे

0: Marshmello and Shirley Setia, ये आपके लिए only on Hum Playing Bollywood's biggest hits. What a song यार, ये मेरे को गाना बहुत पसंद है क्योंकि इसमें शाहरुख खान का भी फीचर है.
1: Yes.
0: आपने इसका वीडियो देखा है कभी? इस गाने का बहुत क्लास वीडियो है इस गाने का.
1: Yeah.
0: Well, we have a caller here. नमस्कार, आपका स्वागत है.
2: हाँ जी,
0: बताइए.
2: अच्छा, पहले तो आपका आप दोनों का प्रोग्राम मैं काफी एंजॉय करता हूँ. ड्राइव टाइम में जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो देख सुनते आता हूँ आप लोगों को.
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.
2: कॉम्बिनेशन आप लोगों का बहुत अच्छा है. पर ये जो आपने वो बात किया था ना कि
1: लीव के बारे में.
2: हाँ जी, हाँ जी, लीव के बारे में. देखो, हालांकि सैंडी बहुत ज्यादा लीव्स है, बहुत देयर आर लॉट ऑफ लीव्स, यू नो, वेलनेस डे वगैरह वगैरह वगैरह. पर इसके साथ अगर आप देखो तो ये जितना लीव्स है, एक एज एन एम्प्लॉयर आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो लोग हैं, लोग बहुत ज्यादा इसको अब्यूज भी करते हैं.
0: Yeah.
2: देखो, जो सिक लीव जो है, सिक लीव को मैं पहले से वो कर देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हमारे स्टाफ नहीं करते ऐसे. बट जिन
1: अभी ये बोलना पड़ेगा ना,
0: अभी बोलना पड़ेगा कि हाँ, हमारे स्टाफ नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग ऐसा बहुत करते हैं. हम भी ऐसे ही
2: मंडे को ऑफिस जाना है ना.
1: हाँ, वही ना.
2: मंडे को फिर ऑफिस जाना है भैया. तो देखो, बहुत से क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि उनका वो जो सिक लीव वगैरह एंटाइटलमेंट है वो ले के बिल्कुल चूस के खून निकाल के उसको लेंगे वो. नो क्वेश्चन अबाउट इट, ठीक है. और दूसरी लीव्स भी जो है वो तो मिलता ही रहता है. और फिर और दूसरी बात यह है कि अचानक से कल्टी भी मार देते हैं कि नहीं आना है, बहुत ठंड पड़ रही है वगैरह वगैरह.
0: ये कल्टीवर्ड सही है, लेकिन आपने कल्टीवर्ड बहुत बढ़िया यूज किया, बहुत सुना सुना. हाँ, लग रही है,
2: सुना सुना लग रहा है.
1: ये संगत का असर है.
2: शायद कहीं और रेडियो वगैरह पे कहीं
0: आते जाते सुनने में सुन लिया है ना.
1: हम संगति हो गए ना अभी. आपकी क्या, आपके पास कुछ आ रही नहीं है.
2: तो यू नो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई मीन यू नो, इट्स एज एन एम्प्लॉयर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और फिर दूसरी बात यह है, अच्छा दूसरी एक चीज और है, साइकोलॉजिकल जो इश्यू है कि अगर आदमी गम करके बैठ जाए घर में के बस हमारा कोई गुजर गया है, करीबी का गुजर गया है, तो दैट पर्सन वुड गो इनटू फर्दर डिप्रेशन.
0: या दैट्स आल्सो अ गुड पॉइंट एक्चुअली.
2: दो तीन दिन चार दिन, हफ्ते भर की बात, आदमी को फिर ये है कि भैया यू नो,
0: लाइफ गोज ऑन,
2: छाड़ो, खड़े हो, लाइफ गोज ऑन. क्योंकि क्या है और वो क्या है ना कि जिंदगी जो है वो जिंदा लोगों के लिए होती है ना. हाँ, जिंदगी जिंदा दिली के नाम, दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं. तो वो मतलब जो आदमी गुजर गया वो तो खत्म हो गया ना, और जो लोग जिंदा है वो लोग जीते हैं, और उनको फिर वो करना चाहिए ना. दे नीड टू गो ऑन.
0: आपकी बातों में आपको ऐसे इंटरप्शन की आदत है क्या? मतलब मैं मालूम है, मैं बहुत इंटरप्ट करता हूँ.
1: क्या है,
2: एक सेकंड
0: ठीक है,
2: अपनी गाड़ी बंद करने दो यार.
0: हाँ, मेरा हमारा रेडियो बंद हो जाएगा भाई.
2: अच्छा, क्या होता है कि मैंने जब गाड़ी को रोक दिया तो गाड़ी का स्पीकर में से निकल गया ना.
0: हाँ,
2: ये होता है.
0: नहीं, हाँ, नहीं, सही है, सही है.
2: तो मतलब
0: समझ गया.
2: you know, it's, ये बहुत मुश्किल बात है.
0: जी जी.
2: ऑल्दो बहुत ज्यादा सिंपथी है जिनके लोग गुजर जाते हैं, जो लोग गुजर जाते हैं, जो जिनका कोई अजीज व कारीब गुजर जाता है.
0: हाँ.
2: या यूं कह लो बीमार हो जाता है, उसमें भी तो बहुत होता है ना
0: जी.
2: बट ये अगर ये लीव जो है बरीवमेंट लीव अगर उसको निकाल के आप 10 दिन करोगे वो बताएगी 20 दिन चाहिए
0: 20 दिन वो सही बोल रहा आप. नहीं आपका पॉइंट बहुत सही लगा वकील साहब, सॉरी मैं आपको कट थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन आपका पॉइंट सही है कि आफ्टर लॉस ग्रीविंग में यू नीड अ डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो.
1: I don't agree fully though, but क्या होता है कि हर person का processing जो होता है ना बहुत different होता है.
0: Perfect.
1: Every person is very different.
0: इस बात पे मुझे लगता है हम podcast करेंगे बहुत जल्दी. अभी क्या होगा, अभी अगर मैं गाना नहीं play करूँगा ना
1: बात करते हैं ना उसमें
0: तो मुझे मैं increment की भी बात नहीं कर पाऊंगा अभी जैसे.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: You're listening to Trendmakers, only on Hum playing Bollywood's biggest hits. Hi Sandy, good evening.
5: A very very good evening. Trendmakers mein aaj aapke liye hum leke aaye hain kya? Kya?
4: Kya? Kya?
5: Kya? Teen bar kya?
4: Ji. Aaj वैसे over the weekend कब है एकता कपूर?
5: Over the weekend अभी 7th को birthday है.
4: 7 June को एकता कपूर का birthday होता है.
5: Yeah.
4: तो एकता कपूर के birthday के मौके पे हम यहाँ पे आज ट्रेंड मेकर्स में एकता कपूर स्पेशल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे बैक टू बैक एकता कपूर के जो गाने हैं, मतलब जो उनके प्रोड्यूस्ड मूवीज के गाने हैं.
5: बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज एकता कपूर ने प्रोड्यूस किए हैं रुजबे, एंड वेल इंडियन टेलीविजन में तो ये बंदी जानी गई है. शी बी नोन एज क्वीन ऑफ इंडियन टेलीविजन.
4: या शी इज.
5: या
4: इंडीड.
5: सो इंडियन डेली सोप्स में बहुत लोगों को इसने रुलाया है, लड़ाया भी है, सब कुछ.
4: फ्रस्ट्रेट मतलब भी किया है.
5: फ्रस्ट्रेट ऐसा सिचुएशन हो गया था कि टीवी सीरियल्स देखते समय जो वाइफ्स होती थी, बेसिकली जब उनके हस्बैंड घर पे आते थे तो उनसे लड़ना शुरू हो जाती थी.

0: कि तुलसी अभी उसके बेटे को मारेगी।
1: हाँ।
0: और भाई लोग रोए वो पूरा उस वो देखते
1: भी
0: देखते
1: और वो भी हुआ था उसके पति मेहर जब की जब डेथ होती है
0: हुआ उसका।
1: वो तो रीबर्थ हुआ लेकिन पहले तो डेथ होती है ना।
0: हाँ,
1: वो तो
0: भी
1: बाद में वापस आ गया अलग ही प्लास्टिक सर्जरी के साथ।
0: हाँ।
1: लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो हस्बैंड घर जाता है कि खाना नहीं बनाया खेती उधर मीर मर गया
0: और तुम्हें खाने,
1: तुम्हें खाने की पड़ी है।
0: So,
1: मतलब दीस काइंड ऑफ सीरियल्स बनाए एकता कपूर ने।
0: जी बहुत ऐसी यादें हैं एकता कपूर को लेकर। बट या आज हम आपके साथ एकता कपूर के सॉन्ग्स यहाँ पे शेयर करेंगे और प्लस बताएंगे कि क्या हुआ है एकता कपूर के लाइफ में।
1: या
0: सुनते रहिए।

0: You're listening to Humbling Bollywood's Biggest Hits. आज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पे एकता कपूर स्पेशल आवर, क्योंकि 7th ऑफ जून एकता कपूर का बर्थडे होता है और उनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें भी हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं।
1: वेल, एकता कपूर जिसने टीवी सीरियल्स को वीकली सीरियल से ट्रांसफॉर्म किया टू डेली अपॉइंटमेंट व्यूइंग, लोग जुड़ जाते थे और केस इनके सीरियल रुजबे शुरू होते थे, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की।
0: बट क्या आपको पता है कि ये सब तो उनके हिट प्रोग्राम्स थे, बट उनके जब शुरू हुआ तो उनका एक्चुअली में एक काफी रफ स्टार्ट हुआ था। 50 लाख का लॉस हुआ था उनको स्टार्टिंग में, और उन्होंने अपना करियर शुरू किया एट एज ऑफ 17 जस्ट एज एन इंटर्न, एंड काफी फेलियर्स उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किए। मतलब लिटरली उनके 6 पहले इनिशियल पायलट एपिसोड्स कंप्लीटली रिजेक्ट किए गए थे नेटवर्क्स के द्वारा, और उसके कारण उनको 50 लाख का लॉस हुआ था। उनका फिर फाइनल ब्रेक थ्रू तब आया जब एक सिटकॉम हुआ करता था हम पांच, 1995 में। ये मैं भी बहुत देखता था। उसमें ना एक स्वीटी करके कैरेक्टर होता था,
1: अरे विद्या बालन थी ना उसमें,
0: विद्या बालन एक छोटे पीरियड के लिए थी उसमें, बट उसमें स्वीटी का एक कैरेक्टर होता था, वो ना दरवाजा खुलने से पहले ना हमेशा गाना गाती थी।
1: मैं इतना याद नहीं है।
0: हाँ, वो तो बहुत क्रेजी था, वो हमेशा ना दरवाजा खुलने से पहले ना गाना गाती थी, है ऐसा करके कुछ गाना गाती थी और फिर बाद में दरवाजा खुलती थी, तो मैं भी वही करता था।
1: मेरे को वो टाइम के जो सीरियल्स है ना, जैसे वो हम पांच हो गया, उस टाइम पे जो सीरियल्स आए थे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। वो दे वर वेरी जेन्युइन एंड वेरी,
0: हम पांच वाज क्लास यार,
1: या क्लास, वेरी जेन्युइन सीरियल्स थे वो सारे के सारे, और कहानियां थी उसमें।
0: जी जी।
1: और आजकल कैसे सीरियल्स आते मुझे नहीं पता है, देखे जमाना हो गया है मुझे, बट वो सीरियल्स जो थे
0: आज के सीरियल्स में भी कहानियां होती है, बट आज के सीरियल्स में ना मेरे को लग रहा है वो ड्रामा बहुत ज्यादा होता है।
1: आजकल के सीरियल्स मैंने रील्स में जरूर देखे हैं कि कोई ऊपर से गिर रहा है,
0: नहीं वो वाला,
1: जैसे कोई ऊपर से गिरने लगा है एंड उसने हाथ पकड़ा एंड देन पता ही नहीं पर्दा कहाँ से आया बीच में, पर्दे में लिपट के कहीं और चले गई, मतलब स्काईफाई टाइप ऑफ सीरियल्स हो चुकी है।
0: क्या बात कर रहे हो।
1: या
0: वो एक अनुपमा करके बहुत हिट हो रही है सीरियल।
1: ओ या, मैंने सुना है काफी।
0: उसका कुछ डायलॉग वायलॉग मैं रील में बहुत देखता हूँ। वो अनुपमा वही है जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में जो मोनिशा का रोल प्ले करती है, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है वो, और अनुपमा में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है एक्चुअली। मेरी मॉम यहाँ पे आई थी तभी, वो भी कुछ सीरियल जैसे फॉलो कर रही थी, तो मैं ऐसे कुछ देखता था उनके साथ थोड़े बहुत, क्योंकि वो बहुत एडिक्टिव होते हैं ये सीरियल्स। आप एक बार देखने लगो ना तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा अभी क्या हुआ, फिर तो मैं मॉम को पूछता था कि अब क्या हुआ, फिर एक हफ्ते के बाद मैं उनको अपडेट मांगता था तो मैं बस इतना ही आगे बढ़ा। तो वो जो रिप्ले और दिस दैट, वो ना
1: बीच में एडवर्ड्स,
0: हाँ वो कुछ ज्यादा ही होता है उनका,
1: बहुत ज्यादा। बट एनीवे, हम बात करें एकता कपूर की, तो एकता कपूर ने वैसे काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2020 में।
0: जी, और भी बातें करेंगे इनके बारे में, लेकिन अभी इनका ही इनकी प्रोड्यूस्ड मूवी का ये गाना आपके लिए।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
4: Walmsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council Te Ararata Creek.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: MediaWorks complaints. How can I help?
7: My kids won't shut up.
6: I'm not sure that's our problem.
7: They keep reciting lines from one of your radio ads.
6: Aw, cute.
7: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
8: What do you want, son?
9: I want me some of that real southern chicken.
7: 28 times.
6: So where are you now?
7: Eating chicken.
10: Advertise with
11: MediaWorks.
10: New Zealand listens to us.
12: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. 4 massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
13: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.

0: आप सुन रहे ट्रेंड मेकर्स और एकता कपूर स्पेशल आज आपके लिए जारी है ऑन हम।
1: एंड एकता कपूर की प्रोड्यूस की गई मूवीज के गाने आप यहाँ पे सुन रहे हैं, और गाने के सीक्वेंस जो आप सुन रहे हो ना, आप नोटिस करोगे इसमें से बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो फीमेल सेंट्रिक है।
0: Yeah, that's right. And Ekta Kapoor actually known for quite female-centric roles as well, na? क्योंकि उनकी जो serials भी होती है उसमें mainly female-centric होती है सारी।
1: क्योंकि सास भी कभी बहू में याद कौन है, तुलसी।
0: तुलसी याद है।
1: The main character is तुलसी।
0: Yeah, मीर तो बदलते गए।
1: वो तो बदलता गया, लेकिन तुलसी एक ही थी।
0: Yeah.
1: Same with कसौटी जिंदगी की प्रेरणा जो थी, was the main character.
0: That's right.
1: Then कहानी घर घर की पार्वती, क्या नाम था उसका?
0: हाँ, पार्वती।
1: Yes. पार्वती।
0: Oh yeah, wow, yeah, Sandy, wow. Very good, yeah. Well done. लेकिन आपको पता है एकता कपूर, उसको एक huge soft spot है for stray animals. वो एक tough taskmaster in the boardroom, लेकिन उन animals को लेकर उनका एक massive heart भी है, और उन्होंने काफी stray dogs को adopt किया है उनके neighborhood में. Yeah. प्लस उनका जो ऑफिस है, बालाजी टेलीफिल्म्स का ऑफिस, ये एक सेफ हेवन है फॉर वेयर सेवरल लोकल स्ट्रे डॉग्स आर रेगुलरली फेड, शेल्टर्ड एंड टेकन केयर ऑफ बाय हर स्टाफ। दैट्स आल्सो वेरी कूल, हाँ, मतलब कि उनके ऑफिस एरिया में स्ट्रे डॉग्स को पनाह मिलती है। पनाह मिलती है। यस, इट इज एकता कपूर इफेक्ट टुडे।
1: बालाजी टेलीफिल्म्स वैसे इनकी प्रोडक्शन कंपनी है, बहुत सारी मूवीज के स्टार्टिंग में हम वो जो बालाजी टेलीफिल्म्स देखते हैं, इसका मतलब है कि वो एकता कपूर की प्रोडक्शन हाउस की कंपनी है। सुपर्ब मूवीज बनाई है यार इन्होंने।
0: हाँ, इनका एक ही चीज है जो काफी कंट्रोवर्शियल, नहीं एक्चुअली काफी चीज है बहुत कंट्रोवर्शियल रही, बट एक चीज जो इनकी बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, इनका ऐप है ऑल्ट बालाजी।
1: या वो OTT प्लेटफॉर्म,
0: OTT प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया था, जहाँ पे पहला जो कंटेंट था ना, वो तो बहुत ही ऐसा अलग टाइप का कंटेंट था, बहुत कंप्लीट कंट्रास्ट टू फैमिली व्यूइंग ऑडियंस।
1: व्हाट वाज दैट?
0: तो काफी ऐसा ए ग्रेडेड कंटेंट वहाँ पे बनता था। लाइक या
1: ओके, या इस वजह से वो कंट्रोवर्सी में रही है। अभी रिसेंटली शी वाज, बिकॉज शी इज वेरी बोल्ड ना, कुछ भी बोलती है, तो अभी वो राम कपूर ने वेट लॉस किया, तो शी मेड अ वीडियो आउट ऑफ इट।
0: अच्छा,
1: उसे वीडियो बनाई कि आजकल लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने नेचुरली वेट लॉस किया है, बट क्या लिया था तुमने, समथिंग कुछ ऐसा उसने वीडियो बना के पोस्ट किया एकता कपूर ने।
0: क्रेजी, हां
1: आई नो।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Accurate traffic. Brought to you by Public Trust. Severe thunderstorm watch for Auckland. A low of 13 degrees tonight. Couple of crashes on the southern. One just past the Drury off-ramp affecting northbound traffic. It's slow from Rama. And southbound, a crash near Khyber Pass and another at Ellerslie. On the southwestern, heavy from Massey Road through to Mangere Bridge. Strong wind gusts possible on the Harbour Bridge.
2: Plan ahead today with a will from Public Trust and keep your family's future protected.
3: सेव करो माइटर 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में विद 25% ऑफ पिंक स्टफ क्लीनिंग और नोवू वायर वार्डरोब्स और 50% ऑफ सिलेक्टेड सिस्टमा प्लस स्पेंड $20 एंटर ऑनलाइन एंड गो इन द ड्रॉ टू विन 5 ग्रैंड एंड्स जून 30th टीज एंड सीज अप्लाई।
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
5: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
6: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
7: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
8: अच्छा
7: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन।

0: You're listening to I'm playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने all एकता कपूर special today.
1: Yes, एकता कपूर जो इसका birthday इस weekend पे होने वाला है तो आज ही हम celebrate कर रहे हैं. इनके production company ने thousands of hours of content generate किया है, जिसके जरिए काफी लोगों का career बना, बहुत सारे actors, writers, directors का career बना है.
0: काफी लोग यार, बस वो अब तक उसका करियर नहीं बनाया एकता कपूर ने. वो अभी कौन थी यार, तानिया मित्तल को कास्ट करने वाली थी ना वो.
1: या पता नहीं अभी तानिया मित्तल की शायद बजट बढ़ गया होगा ना, नखरे बढ़ गए होंगे.
0: अच्छा,
1: बालाजी टेल फिल्म्स रिपोर्टेडली एट वन पॉइंट 20 टीवी शोज रनिंग साइमल्टेनियसली.
0: 20 टीवी शोज
1: डोमिनेटिंग इंडियन टेलीविजन.
0: या डोमिनेट 100% ना, क्योंकि आपने बताया आपने कुछ कुछ ऐसे नाम लिए लेकिन आपने एक और सीरियल का नाम नहीं लिया. कुसुम.
1: ओ कुसुम था एक, ऐसे कुसुम
0: था एक, था
1: कुमकुम भाग्य सेम था क्या,
0: कुमकुम भी अलग था, अलग अलग फिर कुटुम जिसमें हितेन तेजवानी
1: और गौरी उसकी
0: गौरी
1: वाइफ.
0: हाँ, हाँ, हाँ, या, हाँ, वो बहुत हिट, वो बहुत बढ़िया सीरियल था.
1: वो वहां से हिट नहीं, वो क्योंकि सास भी कभी बहू से हिट हुआ था वो कपल एंड देन वो कुटुम में आया.
0: नहीं नहीं नहीं, कुटुम से हिट
1: पहले
0: हुआ
1: उट,
0: पहले कुटुम फिर उसके बाद वो सास भी कभी बहू.
1: वो रियल लाइफ जोड़ी है.
0: मंदिरा बेदी को फिर से रिवाइव किया एकता कपूर ने.
1: Okay.
0: क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं मंदिरा बेदी की एंट्री हुई थी. एंड देन शी वहां पे एकदम ही छाने के बाद फिर देन शी वेंट टू क्रिकेट एंड कमेंट्री एंड ऑल.
1: बट बहुत ही हिट ड्रामास एक्चुअली इन्होंने दिए हैं. रियल लाइफ में इन्होंने ड्रामा भी बहुत सारे क्रिएट किए हैं. सो बहुत सारी चीजों में ये फंसी रही है.
0: इनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी क्वर्की रहा है एंड आई थिंक कहीं ना कहीं करण जौहर और एकता कपूर जो है ना, अगर आप देखोगे so they are almost very similar
1: yeah.
0: in their ways, like they will be very apart. And actually Karan Johar is also a Gemini.
1: Okay.
0: Karan Johar ka bhi birthday abhi recently gaya na.
1: Yeah.
0: 25 May ya iske aas pas.
1: He was Taurus or Gemini?
0: No, Gemini. Gemini.
1: Gemini. Okay.
0: Yeah, yeah. And the same as Ekta Kapoor as well. So yeah, a lot of similarities there.
1: Inke kandhe pe pressure zarur tha because she is the daughter of Jitendra. So Jitendra ki daughter hone ke baad,
0: come on Sandy, wo fir Tushar Kapoor ki bhi behan hai na.
1: Exactly. To wo ek pressure starting mein tha ki inko to break mil gaya. But then she proved herself.
0: Yeah, 100%.
1: Ye usne zarur kiya.
0: I think she was the dark horse in the family kyunki unke bare mein zyada kisi ko pata nahi tha aur wo sir aisa kahin se aayi
1: behind the scenes na.
0: Behind the scenes se aake chha gayi.
1: Yeah.
0: So yeah. So yes, today's show was for Ekta Kapoor. I hope you enjoyed as much as we did. आपके लिए ये शो लाकर. But thank you once again for all the love, for all your support. आपके जो support और love है, इसके कारण ही हम कर पाते जो हम करते हैं आपके लिए.
1: Yes, thank you once again because best Asian podcast में हमें award मिला है, unfiltered को award मिला है. Thanks to you. इसी रोड पे आपको कहते हैं टाटा बाय बाय. अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी.
0: मंडे को मिलेंगे आपसे. अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ. वीकेंड पे हमारे शोज यहाँ पे एंजॉय कीजिए. हमारे बहुत ही बढ़िया से अनाउंसर्स यहाँ पे आएंगे, आपको एंटरटेन करेंगे. कुछ अपने क्या बोलते हैं वो लोकल बिजनेसेस, अगर आपको होम बेस्ड बिजनेसेस अगर प्रमोट करने तो कल सुबह जरूर सुनना रेडियो पे और पार्टिसिपेट करना बिकॉज हु नोस
1: 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं.
0: यू कुड गेट अ शाउट आउट एज वेल. With that, thank you so much. We'll see you soon. Bye.

0: पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: हियर फॉर ऑल थिंग्स ब्रिंटर, स्निफल्स ऑन द सोफा, फ्रॉस्टी फुटी games, a riff, cozy evenings with hot soup, and roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
3: Witty? No worries.
4: South Auckland's buses just became a lot better.
3: Oh my, oh my.
4: With better bus routes, more frequent buses, and more.
3: Grey South Road? Now even greater.
4: Search AT, Better South Auckland Buses for more.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 AM. Non-stop Bollywood.
5: पूछो की करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
6: Let's go.
0: The weekend starts here.
7: Friday night rave.
0: हम

कबड्डी कबड्डी

0: वाह, माइसेल्फ पिंटू।
1: रैम्बो का नाम सुना? टर्मिनेटर का और सलमान भाई, इन तीनों को ना एक मिक्सी में डालो, तीन चार बार घुमो, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के मिल्कशेक निकलता है ना,

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़ न

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
1: सोना संसार पापा टोयोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोयोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोयोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
4: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient, because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favorite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
5: Oi, you! Keen for a midday out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. 4 massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Jen didn't think she needed a DVS system.
2: Oh, I've got insulation in that.
1: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
2: Ah, yeah.
1: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Idea.
1: Streaming on Rover.
2: Non-stop Bollywood.
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दूसरी तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड के बीचलैंड्स इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
2: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
0: नाइट फ्लाइट

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. Playing Bollywood's biggest hits. Budget gaane.

0: को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: सेव करो माइटी 10 मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में विद 25% ऑफ पिंक स्टफ क्लीनिंग और नोवो वायर वार्डरोब्स और 50% ऑफ सिलेक्टेड सिस्टमा। प्लस स्पेंड $20, एंटर ऑनलाइन एंड गो इन द ड्रॉ टू विन $5,000. Ends June 30th. T's and C's apply.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Night Flight on Hum.
1: Itiske retro gunning.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडो जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: Streaming on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz or sponsorships call Karam Hundal on 027-514-6077.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply. Night Flight.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget Gandhi.
3: Hum.
1: Night Flight on Hum.
4: Oh, heer ki khatir mar gaya raja. Chhod ke takht hazaran.
5: So what?
4: Aur heer ta phir di shopping kar di.
5: Big deal, dude.
4: Heer ta phir di shopping kar di. दिन भर सेक्टर 17 भाई, दिन भर सेक्टर 17।
5: ओ मैन,
6: मैनू नहीं चाहिदा कोई राजा।
5: चल झूठी
6: नारा छे दी यारी वीरे, मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा।
5: हाय चुकले रब्बा, मैनू
6: ते चढ़िया चा फैशन दा।

0: Night Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: वो indelible homes वाली कहानी सुनाओ ना.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: An award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
9: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
8: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आशा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
10: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Go.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM Havel. Havel का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप ऑन

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
6: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना स्टाइल के, जहां आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे। विद 19 ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड वाइकाटो, हम हमेशा आपके पास हैं।
7: गो बनाना स्टाइल के इज नाउ ऑफरिंग 30 आवर्स फॉर जस्ट $10 पर वीक फॉर ऑल एजेस।
6: तो जल्दी ज्वाइन करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना स्टाइल के बीचलैंड इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800-46-26-26 टुडे।
7: अवेलेबल एट सेलेक्टेड ब्रांचेस, टीज एंड सीज अप्लाई।
8: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
9: कभी भी कहीं भी।
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम, आपका मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
10: गुड मॉर्निंग एवरीवन, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर मैं क्रिश आ गया हूँ स्टूडियो में आपका साथ देने के लिए। जितने भी हमारे प्यारे लवली लिसनर्स हैं, हफ्ते भर आपने हमारा साथ दिया अलग अलग शोज में, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। आज सैटरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर मैं आया हूँ और प्यारे गाने तो रहेंगे ही और अमेजिंग सॉन्ग्स रहेंगे आपके लिए, बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स रहेंगे, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हम लेकर आए हैं जो एक एक करके आपके साथ हम शेयर करेंगे, गाने भी सुनाएंगे। क्रिश का बहुत सारा प्यार।

ब्रेकफास्ट शो जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स अभी भी आपने रेडियो ट्यून इन किया है, आपका स्वागत है। प्यारे गाने आप तक हम लेकर आते रहेंगे, बॉलीवुड खबरें भी शामिल करेंगे, कुछ साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ सामाजिक सूचना है जो हमारे आसपास होंगे, आगे चलकर शो में आपके लिए हम इंक्लूड करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं आप हमारा साथ हमेशा देते हैं, आपको भला कैसे भूल सकते हैं। आप बस हमें सुनते रहो क्योंकि आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम पेश करते रहेंगे एक एक करके, वो भी आपके लिए होगा। तो डेडिकेट करते हैं अगला गाना हमारे तमाम ऑनलाइन लिसनर्स के लिए जो बहुत ही जल्दी मैं पेश करूँगा। आपको बस हमें सुनते रहना है, क्रिश का साथ है।
1: Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywoods.

0: के दिन चाहे बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
0: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: Walmsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council Te Ararata Creek.
4: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5k savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: इनफैक्ट ये गाना जो है हमारे ऑनलाइन लिसनर्स के लिए है. आपको हमने थोड़ी देर पहले याद किया था, लेकिन गाना अब हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं. आप एंजॉय करें, बहुत ही प्यारा ये ट्रैक है. और ऐसे ही बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स एक एक करके आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. बहुत ही प्यारा लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स है जो आज हम लेकर आए हैं तैयार करके आपके लिए, जो आप इंजॉय करेंगे. और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको सॉन्ग सेलेक्शन कैसा लगता है जो हम लेकर आते हैं आपके लिए. आज सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: Saturday Breakfast on Hum. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: 6th June आज है ब्रेकफास्ट शो में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अगर आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करना चाहेंगे. टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आप तक पहुँचे. एक एक करके प्यारे गाने आपको नजर करेंगे और अगला गाना उन लोगों के लिए जिनका आज जन्मदिन है.

0: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडडे। जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगर आप भी अभी अभी जागे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, अभी अभी आपने रेडियो ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग हम, क्योंकि ऐसे ही प्यारे एंटरटेनमेंट और गाने हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए और ऐसे ही आपकी साथ की ज़रूरत हमें है। आप सभी का स्वागत करते हैं, मैं क्रिश आपका साथ दूंगा मिडडे तक।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. फॉइस फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉयज ने कहा है कि न्यू रूल्स होने चाहिए ऑन एक्टा एग्जिट्स. इन्होंने कहा है कि फॉर्मल इंडस्ट्री फ्रेमवर्क होना चाहिए टू प्रिवेंट लास्ट मिनट एक्टा विड्रोवल्स और ऑर्गेनाइजेशन वांट्स प्रोड्यूसर बॉडीज और गिल्ड्स टू एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी मेजर्स. और कहा गया है ये तब हुआ जब डॉन 3 को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई है जब रणवीर सिंह ने एग्जिट इस मूवी से और इंडस्ट्री लीडर्स अभी डिबेट कर रहे हैं कि वेदर स्ट्रिक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरी और ये फ्यूचर बॉलीवुड प्रोडक्शंस को अफेक्ट कर सकता है. इनफैक्ट ताजुब की बात है कि ऐसे बहुत सारे हादसाएं पहले हो चुकी है लेकिन अभी ये हादसा बहुत बड़ी बात बन चुकी है जब रणवीर सिंह की बढ़ती पॉपुलरिटी और इनका एग्जिट हुआ डॉन 3 से तो इससे फरहान अख्तर एंड द टीम ऑब्वियसली नॉट हैप्पी विद इट. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.
3: दिल बोले तो
4: हार्ट हार्ट
5: हाँ यार सौदा सौदा
4: ओहो
6: दोनों डील कर सील
4: टाइट वेरी टाइट

0: Today Breakfast on Hum.
1: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इट इज सैटरडे और 6 जून आज है. वेलकम बैक एवरीवन. ब्रेकफास्ट शो में आपका एक बार फिर स्वागत है. फर्स्ट आवर में आपने हमारा साथ दिया, अब 20 घंटे पर भी आपको साथ देना है क्योंकि लेटेस्ट बॉलीवुड खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, वो आपके लिए हम शामिल कर रहे हैं. राखी सावंत जो हमेशा डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाती है एक्टर्स को, या फिर अगर जिनको ये पसंद नहीं करती हैं तो उनका खंडन करने के लिए भी तैयार हो जाती है, इन्होंने कुछ कहा है और किस एक्टर के बारे में है वो भी बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: You're listening to number one humping Bollywood's biggest hits. Breakfast show जारी है. It is Saturday 6 June. और अगर आपका जन्मदिन है तो बहुत ही जल्दी आपको भी विश करेंगे. राखी सावंत ने पब्लिकली डिफेंड किया है एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार को. एंड ही इज नन अदर देन रणवीर सिंह. इन्होंने स्ट्रांगली डिफेंड किया है ड्यूरिंग ए मीडिया इंटरेक्शन. इन्होंने कहा है कि एक्टर वॉज बींग अनफेयरली टारगेटेड. और इन्होंने क्रिटिसाइज किया है दोज सपोर्टिंग प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट हिम. हर आउटस्पोकन कमेंट्स बहुत ही जल्दी वायरल हुआ. और हमेशा राखी कुछ भी कहती है वायरल हो चुका है. अभी भारती के साथ में इनका जो इंटरव्यू बहुत ही वायरल हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी असलियत बताई है दुनिया को. अंदर से बहुत ही मोम और मुलायम और बाहर से सख्त और कठोर, ऐसा ही कुछ इमेज इन्होंने बना के रखा है. और आई एम श्योर इनका जो जर्नी रहा है इट हैज़ शेप्ड हर. तो इन्होंने कहा कि इनके जो रिमार्क्स हैं इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ड्रामा और भी ऐड कर चुके हैं जो ऑलरेडी हीटेड कॉन्ट्रोवर्सी अभी बॉलीवुड में फिलहाल चल रही है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Freezing on the way to the car every morning? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is now on, with up to 50% off branded gear and heaps more. However you do winter, do it with Kathmandu.
2: Rebel Sport has winter sorted. Layer up with deals on puffers, jackets, sweats and fleece, built to keep you warm when the temperature drops. Plus global football fever is kicking off. Grab your fan gear and get game day ready. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
3: Non-stop Bollywood.
4: Hum.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Saturday Breakfast on Hum.
5: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. कुछ सामाजिक सूचना भी बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। कम्युनिटी में क्या कुछ होने जा रहा है, श्रीमद् भागवत कथा भी होने को है 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर के उपलक्ष में, जहां पर पूज्य भाई श्री रामेश भाई ओझा रहेंगे। इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए हम लेकर आएंगे। इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो, क्योंकि एक के बाद एक प्यारे गाने भी आपके लिए हम शामिल करते रहेंगे। ब्रेकफास्ट शो जारी है क्रिश के साथ।

Don't you tell me. You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे. 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मौका है. पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा यहाँ पर रहेंगे. ये जो इवेंट है श्री राधा कृष्ण मंदिर और ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. 5 to 11 June के बीच ये होगा और महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर आप जा सकते हैं. 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ओकलैंड आपको पहुंच जाना है और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Saturday Breakfast Show जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 6 जून है, आपका जन्मदिन है. A very happy birthday. Special occasion आज है, wedding anniversary है, तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे. Best wishes हमारी ओर से आप तक पहुँचे. जितने भी हमारे प्यारे listeners अभी हमारा साथ दे रहे हैं, कुछ celebration घर पर होने जा रहा है जबकि weekend है, तो आपका स्वागत करता हूँ और आपको best wishes भी यहाँ से देता हूँ टीम हम की ओर से. सुनते रहो, अगले घंटे पर मुलाकात होती है with more music, more मस्ती. Amazing musical journey ऐसा ही चलता रहेगा आपके लिए. मैं क्रिश आपका साथ दूंगा till midday.
2: क्या कूल है हम, क्या कूल.

आपका मोमेंट

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
2: A very good morning, everyone. Welcome back to the show. It's past 8, news and sports update ke baad mein. Swagat hai aapka. Breakfast show jari hai aur main Krish aapka saath de raha hoon. Aur interesting khabre bhi aapke liye main lekar aa raha hoon. Is ghante par Bollywood khabron mein Ishan Khattar ne join kiya hai Major International Film Festival jury. Is par jankari dunga. Saath hi mein Ranveer Singh's ke jo aane wali film hai Pralay, it is going ahead reportedly. Is par bhi jankari aapke saath hum share karenge. Kuch samajik suchnaye hain. इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन गाने तो एक के बाद एक आपके लिए बजते रहेंगे. मो म्यूज़िक लेट्स टॉक, ऐसा ही सिलसिला हमारे साथ चलता आया है, क्योंकि हम आपको एंटरटेन्ड रखते हैं और गानों से ही एंटरटेनमेंट आपको मिलती है. बिकॉज वी प्ले हिट्स, ओनली हिट्स एंड बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स जो आपके लिए होता है. वेलकम बैक एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग.

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. ANZ Premiership 2026 round 8 summary par jankari main aapko bahut hi jaldi dunga. Kin khelon mein kya parinam raha hai aur kin team ko aage badhne ka mauka mil raha hai is par jankari main aapko dunga. Ye matches jo chal raha hai aapke liye. Agar aap follow kar rahe hain ANZ Premiership 2026 to round 8 summary bahut hi jaldi aapke liye hum lekar aayenge. Saath hi mein science se related kuch jankari hamare paas hai wo bhi lekar aayenge jo publish hota aaya hai aur मैंने हमेशा शेयर किया है आपके साथ में, जिससे काफ़ी फ़ायदेमंद जो टॉपिक्स पर बातें हो रही है, डिस्कवरी हो रही है, जो शायद आगे चलकर हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ कुछ, और फिलहाल गाने सुनाते हैं आपको. ब्रेकफास्ट शो जारी है. इट इज़ सैटरडे 6 जून और मैं आपका साथ दूंगा मिड डे तक.

काफी बॉलीवुड खबरें भी हमारे पास है जो आपके लिए हम शामिल करेंगे, इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे। प्रलय जो मूवी है रणवीर सिंह की, ये कहा गया है कि रिपोर्टेडली आगे बढ़ रही है डिस्पाइट ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी, जहां पर रणवीर सिंह को बॉयकॉट करने के बारे में कहा गया है। वहीं पर रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म प्रलय, इट रिमेन्स ऑन स्केड्यूल। कहा गया है कि फिल्म विल बिगिन लेटर दिस ईयर, और प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि ये लोग डिले नहीं करना चाहेंगे प्रोजेक्ट। और डेवलपमेंट ने काफ़ी रिएश्योरेंस दिया है फैंस को कि एक्टर्स फ्यूचर कमिटमेंट्स अभी आगे अफेक्ट नहीं होगा। इंडस्ट्री वॉचर्स ने क्लोजली ये सिचुएशन को मॉनिटर किया है और कहा है कि रणवीर सिंह के साथ में काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है इस बात को लेकर, जबकि उन्होंने डॉन 3 से एग्जिट करने का फैसला लिया है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: ड्राइविंग यू होम
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: Bunnings does have heaps of things you can do to keep your home winter ready. No one likes a draft. We've got door seals, window seals, moisture absorbers, make sure nothing's getting too damp. Little things make a big difference.
8: Moriday MDS5 screw-on silver door seal, only $27.51. HPM 3-in-1 bathroom 2 heat fan and light, $141.80. Click 2000 watt upright desktop fan heater, just $15.
7: We can help you get winter ready for less. Lowest prices are just the beginning.
9: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting your back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
10: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. Plus, enjoy free delivery until Monday. On now. Only at Freedom.
11: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
12: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy any three products from Cadbury, Makona, Coca-Cola, Chobani and more for your chance to win instant money off your shop. In-store only. At Woolworths, T's and C's apply.
13: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
14: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
15: And award goes to Indelible Homes.
14: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
16: Kahani of Indelible Homes.
17: This is an announcement from Civil Defence. Between 6 and 7 p.m. on June the 14th, we're testing the emergency mobile alert. Therefore, we advise against partaking in hide-and-seek and other hiding-centric activities. For more, here's Barry Kane from Hidden Arts New Zealand. Barry, where did Barry go? Anyway, on June the 14th, between 6 and 7 p.m., listen out for the emergency mobile alert.
18: Ah, what was that?
17: Oh, Barry, you were behind that curtain. Very devious.
0: The beat of Bollywood.
19: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Hum. Saturday breakfast on Hum.
9: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है. क्रिश का साथ है और हमारा साथ रहेगा मिड डे तक. एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स भी हम पेश करते रहेंगे. इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. कुछ विंटर टिप्स भी हम लेकर आए हैं जो मैं आपको बताते आया हूँ. कुछ और रह गया है जो वो भी आपको बताना चाहूँगा मैं. प्रोटेक्ट स्लीप क्वालिटी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है. इनफ स्लीप ये डिस्टर्बड हो जाता है विंटर में, हमें नहीं मिलता है क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस और लो एक्टिविटी के कारण से शायद स्लीप पैटर्न भी अफेक्ट होता है. अपने रूम को कूल रखें लेकिन कंफर्टेबल रखें. और कहा गया है कि रिड्यूस करें स्क्रीन टाइम बिफोर बेड क्योंकि इससे मेलाटोनिन प्रोडक्शन होता है. और रिलैक्सिंग रूटीन्स आप रखें जैसे रीडिंग, स्ट्रेचिंग या वार्म शावर्स आप करें. पुअर स्लीप से स्ट्रेस एम्पलीफाई होता है, लो मूड भी क्विकली हो जाता है. तो इसलिए स्लीप क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है. मैं कुछ ही देर में आपको विंटर लो मूड को कैसे अर्ली मैनेज आप कर पाएंगे इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. सैटरडे ब्रेकफास्ट शो जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM।
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
7: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
8: It's cold outside and the couch is on your mind.

0: Saturday Breakfast on Hum. Aapka Moment, Krish ka Magic, only on Hum.
1: Welcome back everyone. A very good morning to all my lovely listeners. Breakfast show mein ek bar phir aapka swagat hai. Jitne bhi hamare pyare listeners hai, abhi is ghante par hum shuru karne ja rahe hain Saturday Masti Meeta, jisme bahut kuch rahega. Chalo, der na karte hue shuru karte hain aapke liye ye wonderful segment.
0: Masti Meeta on Hum.
1: वेलकम एवरी वन टू मस्ती मीटा, जो हम सैटरडेज को लेकर आते हैं आपके लिए सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में. मस्ती मीटा में काफ़ी फन और एंगेजिंग और इंटरेक्टिव कंटेंट आपके लिए रहता है, जो हम आपके लिए शामिल करेंगे. कुछ फ़नी बातें, कुछ एंगेजिंग बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे. तो इसके लिए आप हमारा साथ देते रहें. 9 to 10 ये चलेगा, और फिर 10 to 11 जुगाड़ जंक्शन भी लेकर आएंगे, जिसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ और हैक्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिससे लाइफ और भी आसान हो सकती है हमारे लिए. फिर 11 to 12 हमारे लोकल बिजनेसेस को शाउट आउट देंगे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं, और इस घंटे पर भी आपका स्वागत है.
2: आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज़ इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. भैरो बिकम्स बायरन एंड बायरन बिकम्स भैरो बिकॉज़ देयर माइंड्स आर वेरी नर, बिकॉज़ देयर माइंड्स आर वेरी नर, बिकॉज़ देयर माइंड्स आर वेरी नर.
3: एक्सक्यूज मी प्लीज.
4: मेरे पिताजी कहा करते हैं दैट द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम इज अ पोजीशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द एटमॉस्फेरिक
5: You see, sir, debating on the diabolic diagnosis of decisive deliverance, a papad is a rhythmic rhyme replica of a jhapad, where one relishes your hunger and the other relishes your anger. Similarly, sir, bachchan is also a rhythmic rhyme replica of bol bachchan, where one represents a magnanimous name, while the other represents a horrendous game.

0: दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी घड़ी घड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इन टू ड्राई फ्रूट एंड

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: मस्ती मीट आपके लिए जारी है. सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. आप इसका जवाब हमारे पास 5599 पर भेजे. आप हमें बताएं कि विच बॉलीवुड कैरेक्टर वुड मेक द बेस्ट रूममेट. बॉलीवुड कैरेक्टर चैलेंज में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, विच बॉलीवुड कैरेक्टर वुड मेक द बेस्ट रूममेट. कौन सा वो बॉलीवुड कैरेक्टर है जो बेस्ट रूममेट बन सकता है, आपके साथ एक कमरे में रह सकता है. तीन ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको वोट करना है और हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों. पहला है सर्किट, जो मुन्ना भाई MBBS में था. दूसरा है गीत, आई थिंक गीत फ्रॉम जो मूवी आई थी, आई बिलीव करीना कपूर का ये कैरेक्टर था. गीत क्या आपको लगता है

0: सकते हैं चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स. मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
1: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
7: The savings are fully stocked this weekend at Briscoe's, with huge savings store-wide, like an incredible 40 to 60% off all electrical. So rush into Briscoe's, stock up and save. Sale ends Sunday. See online for T's and C's.
8: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. ईट बेटर लिव बेटर नाउ विद कशिश चक्की फ्रेश आटा एंड मल्टीग्रेन आटा, अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नेशन वाइड. www.kashishfoods.co.nz.
9: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
10: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
9: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
10: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
11: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: ब्रेकफास्ट शो जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और इंटरेस्टिंग खबरें भी मैं लेकर आया हूँ। एआई का ज़माना चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एआई चिप को तैयार किया गया है जो कहा गया है कि स्मॉलर देन ए ग्रेन ऑफ सैंड। इमेजिन कीजिए इतना छोटा एआई चिप। 26 मई ऑफ दिस ईयर इसका इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है कैलिफोर्निया USA में, जहाँ पर रिसर्चर्स एट UC Davis ने एक ऐसा टाइनी AI पावर्ड स्पेक्ट्रोमीटर चिप को क्रिएट किया है जो स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड है, और ये डिवाइस से लाइट और केमिकल्स एनालाइज हो पाएंगे लाइक ए लैब मशीन। और कहा गया है कि इट इज़ स्मॉल इनफ टू फिट इनटू पोर्टेबल डिवाइसेस। साइंटिस्ट ने कहा है कि इससे मेडिकल और एनवायरमेंटल टेस्टिंग इम्प्रूव हो पाएगा। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्कवरी रहा है, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, वैसे ही लाइफ कन्वीनियंट भी होती जा रही है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें को बनाकर हमारे सामने लेकर आया जा रहा है ताकि हम ह्यूमन कंज्यूमर्स इसका इस्तेमाल आगे चलकर कर सके। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. कुछ और बातें आपके साथ करेंगे बहुत ही जल्दी पॉडकास्ट पर बातें करेंगे हम अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में क्या कुछ है ब्रेकफास्ट कैचअप में क्या कुछ आप सुन पाएंगे इन चीज़ों पर बातें होगी बहुत ही जल्दी इंटरेस्टिंग मुद्दों पर बातें हुई है और बहुत ही जल्दी इस पर जानकारी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ब्रेकफास्ट शो जारी है सैटरडे है आज 6 जून है जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स अभी हमारा साथ दे रहे हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं या कुछ कामकाज निपटाना है आपको जो कुछ भी आप कर रहे हैं स्वागत है आपका मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं मस्ती मीटर जारी है आपके लिए एक बार फिर सवाल भी दोहराएंगे आपके लिए बहुत ही जल्दी

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
2: Bollywood ka asli blockbuster.
3: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
2: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Masti Meter.
4: हमारा जो सवाल है आज आपके लिए मस्ती मीटा में, इसका जवाब आपको हमारे पास भेजना है 5599 पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सवाल आपके लिए है। बॉलीवुड कैरेक्टर चैलेंज मैं लेकर आया हूँ आपको। विच बॉलीवुड कैरेक्टर आपको लगता है कि बेस्ट रूममेट बन सकता है आपके लिए? विच बॉलीवुड कैरेक्टर वुड मेक द बेस्ट रूममेट? तीन ऑप्शन है आपके लिए, सर्कट, मुन्ना भाई MBBS, गीत और बाबू राव गणपत राव आपते। आप हमें बताओ कि किसके साथ आप रहना ज़्यादा पसंद करेंगे या बेस्ट रूममेट आपके लिए बन सकता है। वोट और एक्सप्लेन कीजिएगा अपना आंसर 5599 पर। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: Saturday breakfast on Hum.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है. वेलकम बैक एवरीवन. स्वागत है आपका. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और एक बार फिर स्वागत है आपका, क्योंकि दिन भर आपने हमारा साथ दिया सुबह से लेकर अभी तक. और मॉर्निंग हैज़ बीन वंडरफुल. थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि आपसे इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा लगता है. काफ़ी लोगों ने हमारा जो सवाल था, काफ़ी लोगों ने बहुत सारे जवाब भेजा. काफ़ी लोगों का प्रेफरेंस रहा है गणपत राव आपते, क्योंकि बहुत ही कॉमेडियन है, बड़ा कॉमेडियन है ये, और उनके साथ टाइम कट जाता बहुत ही जल्दी. कुछ लोगों ने गीत कहा है मैं अपनी फेवरेट हूँ, बहुत कुछ सीखने को उससे मिलता. कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि सर्कट के साथ में भी मज़ा आता है, क्योंकि वो भी काफ़ी फनी है और हिलेरियस कैरेक्टर उनका है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. इस घंटे पर जुगाड़ जंक्शन हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए, और जुगाड़ जंक्शन में क्या कुछ रहेगा इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी. लेकिन शुरू करते हैं आपके लिए जुगाड़ जंक्शन.
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर.
2: वेलकम एवरीवन. जुगाड़ जंक्शन में आपका स्वागत करता हूँ. कुछ ऐसे हैक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे लाइफ और भी इजी हो पाएगा. फ्रेश हर्ब्स को फ्रेश कैसे लौंगा रखा जाए, फोन स्पीकर को कैसे एम्पलीफाई करा जाए, वुडन स्पून ट्रिक के बारे में जानकारी दूंगा, साथ में रिमूव बेड फ्रिज स्मेल्स फ्रॉम द फ्रिज, ये इस पर जानकारी. आइस क्यूब कॉफ़ी पर हमारे पास कुछ हैक है. एमरजेंसी फोन स्टैंड भी एक हमारे पास जानकारी है जो आपके साथ शेयर करेंगे. फ्रेशन अप योर शूज़, थोड़ा बहुत कभी कभी दुर्गंध आ जाता है बंद शूज़ से, तो इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. रबर बैंड जा ओपना, ये भी जानकारी है आपके साथ. हम ये हैक्स शेयर करेंगे आज सैटरडे ब्रेकफास्ट जुगाड़ जंक्शन में. स्वागत है आपका.

जुगाड़ जंक्शन आपके लिए जारी है. पहला है कि अगर आप कोरिएंडर, मिंट या पार्सली को अगर लॉन्गर रखना चाहते हैं, फ्रेश रखना चाहते हैं, तो इनको स्लाइटली डैम्प पेपर टॉवल में आप रैप करें. स्टोर इट इन अ कंटेनर इन द फ्रिज. और इससे कहा है कि फ्रेश हर्ब्स काफ़ी लॉन्गर हो सकता है, रह सकता है. एक और चीज़ भी कहा गया है कि अगर आप लेफ्ट ओवर हर्ब्स आइस क्यूब्स में रखते हैं विद ऑलिव ऑयल फॉर ईजी कुकिंग, ये भी सॉरी यहाँ पर कहा गया है कि आप लेफ्ट ओवर हर्ब्स को फ्रीज कर सकते हैं इन आइस क्यूब्स विद ऑलिव ऑयल, और आगे चलकर ईजी कुकिंग के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है. तो ये हैक भी आप अपना सकते हैं आगे चलकर. कृष का साथ है.

0: प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
1: Please use your imagination for the following ad.
2: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
1: imagine winning $4 million this Saturday. Play in store or online.

0: Bunnings lowest prices? Nailed.
1: Grab 30 seconds 1 litre mould off just $7.90. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings
2: Warehouse. To attract meaty deals on fresh quality sea meat and land meat, I deliver a meeting call. Meat-er. Meat Week on Now at Pack and Save.
3: Rebel Sport has winter sorted. Layer up with deals on puffers, jackets, sweats and fleece, built to keep you warm when the temperature drops. Plus, global football fever is kicking off. Grab your fan gear and get game day ready. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: Want $500 to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
5: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
6: अच्छा?
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं?
6: मिसेस सिंह।
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Saturday breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर. आपका moment, Krish का magic, only on Hum.
11: सैटरडे ब्रेकफास्ट जुगाड़ जंक्शन जारी है और जुगाड़ क्या कुछ आप कर सकते हैं लाइफ को और भी आसान बनाने के लिए, ऐसे ही कुछ टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं. अगर आप अपने फ़ोन स्पीकर एम्पलीफायर पर ध्यान देंगे तो आप अपने फ़ोन को एक क्लीन बाउल में रखें या मग में रखें और इससे नेचुरली जो फ़ोन का साउंड है ये ज़्यादा हो जाएगा व्हेन लिसनिंग टू म्यूज़िक या पॉडकास्ट. आपको क्लैरिटी मिलेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा. कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर आप फ़ोन को अपने कार के जो सीट पॉकेट्स में रखते हैं, जो साइड में होता है, उससे भी, क्योंकि एक बेस उनको मिलता है और इससे वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, एम्पलीफाई होता है साउंड, तो ये भी वर्कआउट होता है. लेकिन क्लीन बाउल या मग में रखे, इससे भी एम्पलीफाई होता है. तो ये भी आप ट्रिक अपनाएं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

ब्रेकफास्ट शो जारी है जुगाड़ जंक्शन में. कुछ और भी जानकारी आपके लिए हम शामिल करेंगे. आज 6 जून है, ब्रेकफास्ट शो जारी है. वुडन स्पून ट्रिक के बारे में क्या आपने सुना है? अगर आप वुडन स्पून रखते हैं अक्रॉस टॉप ऑफ अ बॉइलिंग पॉट, जैसे अक्सर मेरे साथ होता है कि पॉट में अगर मैं राइस बनाता हूँ तो उबल कर बाहर आ जाता है बहुत ही जल्दी. आई हैवन यूज दिस ट्रिक बट आई शुड ट्राई. मैं अभी मैंने पढ़ा कि वुडन स्पून अक्रॉस रखने से कोई भी बॉइलिंग पॉट के ऊपर ये प्रिवेंट करता है फॉम फ्रॉम फॉर्मिंग और बबलिंग ओवर, और एक मेस क्रिएट होने से आप अपने स्टोव को बचा सकते हैं. क्लीनिंग मेस या क्लीनिंग टाइम से आप अपने आप को बचा सकते हैं. क्रिश का साथ है जुगाड़ जंक्शन, आप सुन रहे हैं ब्रेकफास्ट शो में.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Jen didn't think she needed a DVS system.
3: Oh, I've got insulation in that.
2: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
3: Ah, yeah.
2: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
6: TradeDepot.co.nz. Trade Depot now helps people in Auckland save hundreds on hardware. Double power points, $7. Clear silicone sealant, $4. Painter masking tape, $2. Stainless steel flexi hoses, $4. Save hundreds on hardware, tools, plumbing, electrical and paint supplies. Only at Trade Depot in Onehunga or shop online.
7: TradeDepot.co.nz.
8: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.

0: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
1: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. Four massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
2: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
3: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, जुगाड़ जंक्शन को आगे बढ़ाते हुए, क्या आप अपने फ्रिज से बैड स्मेल को हटाना चाहते हैं? तो एक ओपन बाउल ऑफ बेकिंग सोडा आप रखें इन द फ्रिज, ये दुर्गंध को एब्जॉर्ब करेगा और कीप फूड स्मेलिंग फ्रेश, ये भी होगा इससे, तो ये भी आप कर सकते हैं. फ्रीज लेफ्ट ओवर कॉफ़ी इन एन आइस ट्रे एंड यूज़ द क्यूब्स इन आइस्ड कॉफ़ी, अगर आप आइस कॉफ़ी पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ रेगुलर आइस, ताकि आपका ड्रिंक वाटर डाउन ना फील हो आगे चलकर. आइस होने से थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, तो अगर आपको थिक कॉफ़ी पसंद है तो फिर लेफ्ट ओवर कॉफ़ी को आप फ्रीज कर सकते हैं आइस ट्रे में. इससे थिक और नाइस आइस कॉफ़ी आपको मिल सकता है. क्रिश का साथ है और ब्रेकफास्ट शो को आगे बढ़ाते हुए और प्यारे गाने.

0: जुगाड़ जंक्शन में एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं जो शायद ये इस्तेमाल आप कर पाएंगे. क्विक विंडो क्लीनर, अगर आप इक्वल पार्ट्स ऑफ वाटर और वाइट विनेगर मिलाते हैं स्प्रे बॉटल में, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव स्ट्रीक फ्री विंडो क्लीनर बन सकता है आपके लिए. एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा जिससे ज़िंदगी और आसान हो सकती है, ड्राई टी बैग अगर आप एक स्मॉल पाउच में रखे, ड्राई टी बैग या स्मॉल पाउच ऑफ बेकिंग सोडा अपने शूज़ के अंदर ओवरनाइट रखे, इससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा और जो बैड स्मेल है ये भी निकल सकता है. तो आप ये भी इस्तेमाल करें. हमें बताएं कि ये टिप्स आपको कैसे लगे या फिर इफ़ेक्टिव है या नहीं. मुझे भी जानना है कि किस हद तक ये टिप्स आपके लिए इफ़ेक्टिव होता है. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ.
1: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने. हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुनें.
2: Schools use fiber to study in virtual reality, whereas Kim used it to study her family's genealogy to discover she has a long-lost relative in Taupo who streams true crime podcasts about missing people that often begin with an ad from Chorus saying New Zealand runs on fiber.
3: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a Shower Dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every Shower Dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
4: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
5: If you're in the loop with ANZ, you now earn cash back with your Visa debit. So if you spend on things like food,
6: noodles,
5: or fashion,
6: gorgeous,
5: or even a shiny new appliance,
6: shiny,
5: money loops back. Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
7: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobil when you want it, even on game day. Choose your discount day each week, only in the Mobil NZ app. Let's go. For a limited time only, T's and C's apply.
8: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Desi Biz shout out on Saturday breakfast. Aapka moment, Krish ka magic, only on Hum.
0: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इस घंटे पर देसी बिज शाउट आउट करेंगे जितने भी हमारे लोकल बिजनेसेस है, बिग और स्मॉल. आपका समर्थन के लिए थैंक यू. आपको याद करते हैं जितने भी हमें सुन रहे हैं लोग. अगर आप एक बिजनेस ओनर है, डायरेक्टर है, और हमारी ओर से अ बिग शाउट आउट टू यू. देसी बिज को हम शाउट आउट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस सेगमेंट. तो आपको भी हम याद करते हैं. और चलो आपके लिए कुछ गाने भी शामिल करने जा रहे हैं हम इस घंटे पर. कुछ सामाजिक सूचना है, हमारे हम पॉडकास्ट पर भी बातें करेंगे आपके साथ. और एक और जो इवेंट है, इंडियन इंक थिएटर कंपनी द्वारा जो इवेंट होने जा रहा है, ये बलून डॉग, इस पर भी जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में तो आपने सुना होगा, रिज़्बे और सैंडी के साथ बहुत ही वंडरफुल इंटरव्यू होते हैं अलग लोगों के साथ. WWE में क्या होता है, क्या ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है या रियल फाइटिंग है, इस पर कुछ बातें होंगी. और इनका इंटरव्यू हुआ है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शंकी सिंह, एक 7-foot-tall रेसलर है ये, और हु मेड इट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन ऑफ हरियाणा टू ग्लोबल WWE स्टेज. कुछ ऐसी बातें यहाँ पर होगी जो आप सुनना चाहेंगे. द ट्रूथ अबाउट WWE, क्या वो स्क्रिप्टेड है एंड व्हाट्स रियल. ब्रूटल जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू WWE फ्रॉम इंडिया. लाइफ बिहाइंड द सीन्स एट द परफॉर्मेंस सेंटर. रिस्क, इंजरीज और फिजिकल टोल ऑफ एंटरटेनमेंट रेसलिंग. साथ ही में इनका टाइम विद सलमान खान जब इन्होंने फिल्म भारत में काम किया इनके साथ में, और अनटोल्ड स्टोरीज और लॉकर रूम रियलिटीज और थिंग्स जो फैंस को कभी पता नहीं चलता है. इनका ट्रेनिंग अंडर द ग्रेट खाली ये कैसा रहा, टू परफॉर्मिंग ऑन ग्लोबल स्टेजेस, इस पर भी बातें होंगी. तो आप टेक्स्ट करते हैं ड्राइव 5599 पर तो ऑडियो और वीडियो एपिसोड के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा. ये वीडियो प्रोडक्शन हो रहा है बाय इंस्पायर मीडिया, बाय इंस्पायर मीडिया वर्क्स, जो मार्केटिंग, रियल एस्टेट और इवेंट वीडियोस करते हैं. आप केतन से बातें कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स. कुछ देर में ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बातें करेंगे आपके लिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizbe. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Saturday Breakfast on Hump.
1: You're listening to number one Humpling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे. 25th anniversary of श्री राधा कृष्ण मंदिर के उपलक्ष में श्रीमद भागवत कथा सुनने का मौका है. पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा यहाँ पर रहेंगे. ये जो इवेंट है श्री राधा कृष्ण मंदिर और ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. 5 to 11 June के बीच ये होगा और महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर आप जा सकते हैं. 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ओकलैंड आपको पहुंच जाना है और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम लेकर आते रहते हैं। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना है कि रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाउ में आयोजित किया गया है 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ। ये 13 जून को होने जा रहा है। सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है और प्रोग्राम की शुरुआत होगी सुबह 7 से लेकर 8 बजे। स्थापना पूजा होगी, फिर 8 AM to 6:30 PM चालीसा पाठ होगा विभिन्न मंडलियों द्वारा। हवन और आरती भी यहाँ पर होगी। प्रसाद और महाप्रसाद की भी प्रबंध की गई है यहाँ पर आपके लिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और भी जानकारी के लिए 021-0299-1219 पर आप संपर्क कर पाएंगे। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: The Moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You are listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. पॉडकास्ट आप सुन पाएंगे हमारे अनाउंसर्स द्वारा. अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में मैंने आपको बताया और ब्रेकफास्ट कैचअप एक और पॉडकास्ट है जो आप सुन पाएंगे. कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा. अलग अलग मुद्दों पर बातें होती है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. अगर आप टेक्स्ट करते हैं BF5599 पर तो आप कैचअप कर पाएंगे ऑन द पॉडकास्ट. तो BF टेक्स्ट करें ना भूलें 5599 पर, जहां पर ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट के बारे में जानकारी आपको मिलेगा, लिंक मिलेगा, डिटेल्स मिलेंगे और क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ किन टॉपिक्स पर बातें होती है, कन्वर्सेशंस होती है विद विजय एंड पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, ये भी सुनने का मौका रहेगा. सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.
0: देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट.
2: ड्राइविंग यू होम. ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an adored fabric draft stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in store. Lowest prices are just the beginning.
7: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
8: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
9: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
10: And award goes to Indelible Homes.
9: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
11: Kahani of Indelible Homes.
12: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
0: जबरदस्त हिट्स
13: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं.
0: Bollywood's biggest hits.
2: Hum.
0: Saturday breakfast on Hum. You're listening to Krish.
14: Let's go!
1: ब्रेकफास्ट शो जारी है और कुछ ही देर तक और हम आपका साथ देंगे. ऑनलाइन लिसनर्स को भी शामिल करते हैं. 6 जून आज है, जन्मदिन है आपका. अ वेरी हैप्पी बर्थडे रोवा पर जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हैं, आपका भी स्वागत है. और रोवा के जरिए आप हमें सुन रहे हैं जहां पर भी आप हैं. आपको अगला गाना डेडिकेट कर रहे हैं. जितने भी हमारे बिजनेसेज हैं, लोकल बिजनेसेज, बिग और स्मॉल, मीडियम बिजनेसेज, अगर आप एक बिजनेस ओनर है, डायरेक्टर है, आपको बिग शाउट आउट. और आपके स्टाफ को भी, आपके मैनेजमेंट को भी बिग शाउट आउट हम दे रहे हैं अगले गाने पर.

0: Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: ब्रेकफास्ट शो यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. बहुत ही प्यारा लगा. हमारी मुलाकात होती है कल. जस्ट चिल हम लेकर आ जाएंगे मिड डे से लेकर शाम 6 तक हमारी मुलाकात होती है. अपना बहुत ही ख्याल रखे. कृष का बहुत सारा प्यार. नमस्ते.